0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिन्दुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी

0: लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार सुनुले आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारीपदा निवेदन करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम बंदना। आजर प्रथम शिल्पी सुभाष दास कंठरे अलेख विश्वाल रचना।

0: मिजोरम त्रिपुरा उपहिमालये पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तराखंड विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरंभं करिष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृतरे संवाद सुनिले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी बारीपदा समय सकाळ 7:00 शुणंतु कार्यक्रमर सूचना।

0: कथा तू कोन जानु नहि मु जानि जानि एपरि भूल करि परबि नहि तो घर भरु जेति के संतान जादा हेबो से सब को गोटी गोटी करि मारिबि
1: हे भगवान मति विपद रो उद्धार करंत प्रभु तुम छडा के अछि हमर जहा को निजर भाबिथिली से जे मारो शत्रु हेला कहा को भरोसा करिबि उपाय दियो प्रभु बाट

0: देवकी एबे आमे करिबा कोन सप्तम गर्भर संतान को आमे बंचाइबा केमिति आमर गटी गटी करी छ गटी संतान को कंस हत्या करी सारिलेनी कि उपाय करिबा
1: हे भगवान जगतर सृष्टिकर्ता आमको सहा हो प्रभु तुम्हें चाहिले सब करी परिबो मोर एतिके मात्र प्रार्थना।

0: संतान प्रसव
1: करहरी मुसुचे ये पुत्र नुहे देवकी के कन्या प्रसव कर बोधय मोर भ्रम हो
2: हत्या कले मोर मृत्यु भय दूर हे देरी कंस तो सहित असुर कुल को समूल विनाश करने निम्ते स्वयं भगवान कपपुरी बढ़ुंट तू वृथारे देवकी को बंदीशाला आबद्ध कर रखी सीना शीघ्र मुक्ति पदबंदना कर जदि मुक्ति पाइबु मृत्यु तो निकटतर हो गला तू जहाँ कले भी तोर मृत्यु सुनिश्चित।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय

0: समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
1: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
2: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
1: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
3: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटेकोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरनामुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

0: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली, खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है, अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता, क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा। सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार प्रभात शुणुले आकाशवाणी दिल्ली रो।

0: हेलो,
1: नमस्कार, गुड
0: नमस्कार।
1: मॉर्निंग।
0: सकाळ और शुभेच्छा।
1: रक्षाबंधन तो भी गला एंड
0: अच्छा,
1: इंडिपेंडेंस डे भी गला। एबे आसुची कुमार पूनमी आसुची, तापरे गणेश पूजा आसुची, जन्माष्टमी आसुची, नवरात्रि आसुची, खाली पावन ए मासरे राइट सर।
0: गणेश पूजा पाखरु सब आरंभ हो जीवो।
1: सबु आरंभ है, आमे प्राउड करछ आमे निजको कहिके जे 12 मासरे 13 पर्व एटा केवल आमे ओडिसा रे ही हुए।
0: हां हां हां
1: ओके, सो वन सेकंड। नमस्कार, हाय एवरीवन, हेलो बारीपदा, दिस इज मामा मिश्र एंड आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर। मोर गोटे जमी एफएम गोटे परिवार, मो निज परिवार आ मो साई बाबा गोटे परिवार। मो पुणे आसला मानी सिली जमती है आसी।
0: तबे आपण बुलावली करिया पई बहुत भल पांती मामा भवन।
1: बुलाबुली करछे, एडवेंचर नकल हम समस्त को कहि जे केमती कुआडे जाई छी, कोन करछी ए जगह को जातु, आ निजे खुशी रहिया पई भी। सर शायरी कहबी?
0: निश्चित कोंदो।
1: प्यार दिल है, दिमाग नहीं, प्यार सोच है, आवाज नहीं, कोई आंखों से नहीं देख सकता प्यार के जज्बा को, कोई आंखों से नहीं देख सकता प्यार के जज्बा को, क्योंकि प्यार एहसास है, टाइम पास नहीं।
0: बढ़िया बढ़िया,
1: थैंक यू।
0: केमती अच्छा आपण प्रथम कह दियो।
1: सर भलो अछि, बुलिया को अछि एंड आपण कर प्रति मास को थरी गैप रति के फोन करछि, आ बहुत निजर निजर लागै छि। आज भी मैं भी मोर संग होते जॉइन हे परे बारी पदारे
0: जरी
1: बच्चा न होला, एपटे भी सर बच्चा होउ छि।
0: अच्छा,
1: बहुत भलो अछि, आपण एक्सपेक्ट करछि भलो थिबे।
0: भलो तो अछि, किंतु आपण मते कथा दे कि ठकै दउ छथि।
1: अच्छा कौन कौन कहला कुंतु
0: सेटा पुनी मने भी रखि नांदे।
1: अच्छा
0: श्रोता मैंने मन रखिथे, श्रोता मैंने जो कथा।

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मुना पंडा कोटिला थाना फिर जगदम्बर कहते
0: अच्छा
1: आज्ञा।
0: बहुत दिन पर आम कथा मन पड़े
1: हाँ बहुत दिन बाद
0: आपको।
1: यार के देखते भाई आपण जो टेलीफोन ना बड़े केतले रिंग हो जी केतले कटुची केतले लागु जी केतले तने रिंग हो जी पुनी मजा मजा इन कर
0: केमिति अच्छा
1: आज्ञा।
0: आपण?
1: हाँ मु तो सब बिंदास आशा अच्छे माँ शाला का आशीर्वाद आपड़ बिंदास खुशे था माँ शाला मन गोटे रखि था पाखापाखि एक वर्ष बाद आज आपंग कथबार्ता अच्छी बारिपदा जो भाई बहुत खुश लगता है आज्ञा।
0: बहुत बढ़िया कथा जाए कि आपन को फोन लगी। आउ केमिति आपन को अंचल रे केमिति कौन सब आपन कौन करुछन्ती एबे?
1: हाँ देखो ना आम अंचल तो हेल्ला जलसर अंचल जानते उपकूलवर्ती अंचल बात्या बना प्रवण अंचल तथापि चलती ठीक ठाक चलती बर्षा ए वर्ष एभली वर्षा बोधे मुझे पहला देखने वर्ष एभली वर्षा होती एभली वर्षा केवे कहना लोक एवर्ष एभली हईरा बर्षा नहीं कि मैंने
0: आज्ञा
1: चार थर पांच थर लोक धान रुईले कि दि दिन बाद पुणी वर्षा आस पानी उड़े दो पुणी तली खाई दो पुणी आगे इटी सीटी कि चलती धान रुआ प्रकार कि बहुत भलर अच्छा जलसर आसी क्या सुख दुख तो जीवन लगी रही सब खुशी पाया सब दुख पाई आता किसी कारण नहीं चलती भल हालचाल सब भल भल अच्छे जलसर अंचल आसी आ
0: ঠিক আছে। তবে কুহন্তু মুন্না ভাই, কোন শুনেব আপনার হেলো বারিপদা কার্যক্রমরু?
1: ফিল্ম না আছে দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়গা গীত আছে তুজে দেখা তো জানা সনম আর গীতটা রেডিয়েস তাতে পাঠে আপনার আর পঙ্কজ মিশ্র নরেন্দ্র সাউ সোনপ্রভাকর কে নারায়ণ পাত্র আর যেত সোতা ভাই ভণী রে সমস্ত
0: ঠিক আছে। তবে আপনার পছন্দর গীত আমি শুনেছু, ধন্যবাদ।
1: রাহুজি ভাই নমস্কার।
0: নমস্কার।

0: बैंड बाजा बारात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें बेनी दयाल हिमानी कपूर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्स थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

श्रेया घोषाल की आवाज में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, से समीर ने लिखा था चित्रलोक कार्यक्रम में। अब आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत।

अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और

आज है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, बलपूर्वक गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन ऐसे लोगों के लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचने और लापता हुए पीड़ितों को स्मरण करने और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने का दिवस है, जिन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जिनके बारे में परिवार आज भी सच्चाई और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति मानवाधिकारों का सबसे क्रूर हनन है, जहां पीड़ित परिवारों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पल पल संघर्ष करना पड़ता है। आज का यह दिवस हमें इसी खामोश त्रासदी के खिलाफ आवाज उठाने और खड़े होने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल इस दुख तकलीफ को याद करना ही नहीं, बल्कि इसके प्रति सामूहिक चेतना जागृत करना है। आइए आज हम इन लापता किए गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लें।

अरिजीत सिंह की आवाज में छिछोरे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे प्रीतम का संगीत था। सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत आपको अब सुनवा रहे हैं एक बार और। अरिजीत सिंह की आवाज है, कुमार के बोल है रोचक कोहली का संगीत।

0: सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे। कुमार ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
0: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

0: होते।
1: शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद है शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंपकर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने

वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह

0: 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2,400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: था ये आवाज तो मेरी माँ को, लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहाँ से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था। बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
2: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में। चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
1: जी।
2: और बाइक चलाना भी सीख लिया था
1: जी। बिल्कुल, आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
2: 6th क्लास में?
1: 6th क्लास
2: पैर वैर पहुंच रहे थे?
1: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
2: भाग जाएगी
1: चाबी चुरा के।
2: एक्सीडेंट का डर नहीं?
1: हाँ, तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना। बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल

0: गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल। जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे
0: रोके
1: भगवान।
0: कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे। फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं। पता नहीं क्यों था मेरे
1: गाड़ी
0: अंदर
1: मतलब
0: 4-व्हीलर
1: प्रॉपर
0: प्रॉपर।
1: वो
0: तो
1: लाल बत्ती वाली।
0: नहीं, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में
1: हाँ
0: हम लोग
1: वो
0: जब
1: एक
0: फिल्में
1: आजादी
0: देखते थे,
1: का।
0: वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते हैं। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज़ पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे। तो
1: पैर पहुंचने
0: हाँ,
1: लगे।
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम 6th स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो बाई 6 लेके 8, 9 तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, काफ़ी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज़्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन पर
0: एजुकेशन पे फोकस है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाई कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर होते तो।
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में, वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही हैं, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके. तो मेरे टीचर्स काफ़ी बदलते रहे थ्रू आउट बचपन.

0: से लेकर के मुंबई आने तक एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक. और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहाँ भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे. पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ.
1: बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन,
0: बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है. माँ ने मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के ज़माने में जिस लड़की का बायोडाटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे.
1: मतलब इतनी काबिल है,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे. और वहाँ से आई वॉज सेंट टू यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है.
0: नहीं है, नहीं.
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां.
0: करेक्ट. तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वॉज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत मतलब एक ही सुर में चलने वाला टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे. तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स. और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के. आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो. ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है क्योंकि हाँ. इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये.
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: सुंदर

0: दीपाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक CSR हर बच्चे ने पढ़ी होगी, UPSC की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा ज़माना जब आया, जब हम 7th-8th में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था RJ। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो RJ ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहाँ सुन रहा है, वहाँ नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज़ बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। अच्छा, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि RJ हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड RJ, सो दे मेड मी एन RJ फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें RJ के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और RJ भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया, ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफ़ी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है स्टेज पे जाना।

0: गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है चलो, माफ़ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे। हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे, या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे माँ बाप को 12th के एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड।
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं,
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी। और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए, और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे। और वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहाँ आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहाँ के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेंढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्ज़ा और बर्गर के फोटोज़ और वीडियोज़ देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल दो अंग्रेज़ी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में ये था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा। अंग्रेज़ी इसको कैसे आती है। और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए। वो स्ट्रगल मेरे लिए ज़्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं।
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
0: इतना
1: रहा है।
0: बड़ा, और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आए कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है।
0: करेक्ट।
1: बाकी तमाम चीज़ें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज़ पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज़ है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहाँ तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को यू नो जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है
0: जी। तो इंडियन आइडल करने

0: उसके बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था, वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको। अच्छा, अब तो आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने। हाँ। और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट।
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता है। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है, और हम करके बात करते हैं तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना, तो बड़े काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के, अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी मान चुके
0: ये भी माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ। देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए, बेटी बचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से में इसका अर्थ भी बता दें।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज ना देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है।
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है।
1: तो ये हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
0: ख्वाब होता,
1: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी,
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं। आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
0: वो भी
1: वो
0: एक
1: है
0: होता
1: जीवन
0: है। हाँ।
1: जीवन वो है,
0: बिल्कुल,
1: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है। ये बहुत बड़े

0: होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, चार दिन सल्क भी करती है और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट।
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
0: और
1: था।
0: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं। बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम। रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी। पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी। अपनी
1: कमजोरी दुनिया के सामने
0: नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: अंदर तो तूफान,
1: ऊपर सब कुछ स्थिर है।
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा,
0: कि
1: एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने।
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
1: हाँ।
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है। हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे। मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है। मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद, लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद,
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक हो गई।
0: पहले था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं। आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है।
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है। आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज है, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा। घुसे, कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है। ये स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब
0: हम दुखी
1: एक अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे, यू नो, और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, यू नो।

0: वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे कि बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और यू नो क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं. सो वो जो दो दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को यू नो हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं. इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट टू डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट.
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता, ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको, हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे. हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया. करनी तो पढ़ाई थी. अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है. यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी. अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें.
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है. तो वो जो दो तीन महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या. गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे. अब करेंगे क्या, एक साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता. तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा.
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका यू नो वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं. अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं.
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी.
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार. एक वो बच्ची होती है ना जो आती है पार्टी में, रौनक आ जाता है,
1: सब मुड़ के देख,
0: सब मुड़ के देखते हैं, ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है,
0: कलाकार है ये. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: वो पर्दे के पीछे है. जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं.
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है. बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में.
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
0: जी.
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका,
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान
0: होता है, सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ,
0: दो तीन साल के अंतर पर.
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं.
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं. मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग. पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे. उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं.
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रहे हैं, फोकस हासिल कर रहे हैं, उस वक्त

0: वो कहाँ होती थी?
1: वहीं होती थी और स्माइल के साथ वहीं रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको। हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है। हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है। मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी। मेरी माँ पढ़ रही थी अर्जुन, अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे।

0: पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में, तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था। हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी, तो बहन की बात चल रही है।
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी, और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज़ से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो। तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज। कोशिश करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है,

0: मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है। जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल
0: जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम,
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया की ना
5: पर दादी हाँ आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
7: शुभ शुभ बोलो
8: क्या
9: आरबीआई कहता है
10: जानकार बनिए सतर्क रहिए
11: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
13: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे

0: साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नमस्ते।
0: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया, लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, कारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे, उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं, एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं,

0: कि इस प्रदेश में इस टाइम में इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो, तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए, भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाए। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस

और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को

स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी

किले ने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने, उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी, यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को

0: महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदये राज करबेन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: अरे क्या वो मैं साफ बताओ क्या करना है 3 बजे।

0: करना नहीं है, सुनना है।
1: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
0: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
1: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए हैं कि हम हर रोज एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो चलिए हम आपको आज की इबारत पढ़कर सुना देते हैं क्या लिखा है हमने। परदेसी सजनवा की याद में सारी रैन बीत गई, आंखों में नींद आई, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। दोस्त न रहा तो दिल के गिरह खोलने की कोई बात, कहने को कोई राह भी न बची। सजनवा बैरी हो गए हमार, फिर भी उससे मोहब्बत कम न हुई। ये दीवानापन था या मोहब्बत का सुरूर, समझ न सकी मैं कभी। दोस्त ने जाते जाते प्रेम की राह पर चलना तो सिखा दिया था, लेकिन न सिखाई होशियारी। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया है, जरा बताइएगा। कहा था तेरा मेरा प्यार अमर है, इसे वक्त कहाँ मिटा पाएगा। एहसान तेरा होगा जो लौट कर कभी मेरी चौखट पर आओगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और मैंने दिल की गिरह खोली तो एक अजीब दास्तान सामने आई। सूरज जरा पास था, फिर भी तेरी याद ने शाम बना दी, और ठंडी ठंडी सावन के फुहार में तेरा प्यार ही मेरा सबसे अनमोल धन बन गया। बरसात में हमसे मिले तभी तो बरखा बहार आई, जमाना कहता रहा पते की बात, हमने सुनी दिल की बात। दोस्तों, आज भी हम यही सोच रहे हैं कि आज आप जो गाने सुझाएंगे वही गाने हम सुनवाएंगे। वैसे विविध भारती की फेसबुक पेज पर जब

हम टहल रहे थे तो देखा कि बहुत सारे गाने वही हैं जो हमने सोचा था, लेकिन बाकी गाने भी आप जरा लिखिए तो हम वही गाने सुनवाएं। जैसे अभी अभी एक इबारत में लाइन है, ठंडी ठंडी सावन की फुहार, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा गाना याद आया है जरा बताइए, ताकि हम वही गाने सुनवा सके, ताकि आपकी भी मुराद पूरी हो जाए और हमें भी आसानी हो और खुशी भी मिले कि हमने आपके दिल की बात टटोल ली और वही गाना सुनवाया जो विद्वाती से हम सुनवाना चाहते थे। जरा सोचिए कि यही गाना सोचा था आपने, और इसमें हमें बताइए कि कौन है कलाकार, पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, फिल्म अनाड़ी।

सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी. बहुत मुश्किल है होशियारी सीखना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग पारंगत होते हैं इस गुण में. जो आज के ज़माने में सीख ले होशियारी, वो समझ लीजिए कामयाब भी है. वैसे बहुत सारे श्रोता क्या सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है कि आज मामला क्या है. हमने इबारत में एक लाइन लिखी भी थी कि आज तो कुछ ख़ास बात है. क्या ख़ास है, चलिए हम भी आपको बता ही देते हैं, याद ही दिला देते हैं. गीतकार शैलेंद्र की जयंती है आज, 103 बरस पूरे हुए. आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की याद को समर्पित है. आज की जो इबारत है, उस इबारत से आपको चुनने हैं शब्द और कुछ गाने जो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं. तो आप वो गाने चुनिए और साथ में ये भी बताइए कि शैलेंद्र की गीतों की कौन सी वानगी आपको प्रभावित करती है. दर्शन वाले गीत, आंचलिक गीत, मतलब जिसमें ग्रामीण परिवेश है, रोमांटिक गीत, या फिर स्त्री मन की पीड़ा जिसमें निहित है वो गीत. आप अपनी पसंद बताते रहिए और गाने लिखते रहिए. साथ में हमारे

पहेलियां भी पूछते रहिए। आपके चुने हुए गाने हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ गाने हम जब अपनी ओर से सुनाएंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपके दिल के करीब हैं या नहीं। एक श्रोता ने अभी अभी लिखा है, शैलेंद्र ने बेहद सरल शब्दों में जीवन के कड़वे सच को बयां किया है। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी पंक्ति इंसान की मासूमियत और उसकी लाचारी को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। संगीत और गायकी शंकर जयकिशन का है, मुकेश की दर्द भरी आवाज मन को छूती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है और ये भी हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। एक हमारी श्रोता है, नियमित श्रोता, जिन्होंने लिखा है कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, ये केवल गीत की पंक्तियां ही नहीं है, ये तो उनकी सरलता अपनी बात को सहज रूप में लोगों के सामने रखने का अपूर्व कौशल है। उनके गीतों में एक सीख है, कर्तव्य बोध और नैतिक मापदंड की घुट्टी, सभी कुछ क्या बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कबीर सदियों पहले कह गए थे, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसी पंक्तियां कबीर की ही बानी की अनुगूंज है। मगर बावजूद इसके शैलेंद्र कबीर नहीं थे बल्कि कबीर उनमें समाहित थे। क्या बात लिखिए भाई, शैलेंद्र बड़े जीवट वाले इंसान थे, सपने देखना और उन्हें सच करना उनको आता था, ये उनके रंग बिरंगे सपने ही थे जो सैकड़ों की तादाद में गीतों की शक्ल में हवाओं में आज भी गूंज रहे हैं और इस समय विविध भारती से गूंज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, असली नकली फिल्म से आपको पूछना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में संगीतकार का नाम भी पूछना है। अब गाने हमें सुझाते चलिए ताकि हम वही गाना सुनवा सकें जो आप सुनना चाहते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। साधना और देव आनंद इस फिल्म में हीरो हीरोइन। संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया है, शंकर जयकिशन। फिल्म थी असली नकली। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों में लोक संस्कृति आंचलिकता मतलब मिट्टी की सूंधी महक को बेहद सहजता से पिरोया। मूल रूप से बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने के कारण ग्रामीण जीवन, लोक भाषा और आंचलिकता उनके रग रग में बसी है। शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी की शुरुआती फिल्मों के लिए भी कई ऐतिहासिक गीत लिखे, जैसे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ई बो। जब भी भोजपुरी भाषा की बात चलती है तो ये गीत जरूर याद किया जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें तो उनके भोजपुरी गीत का रंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें जो ग्रामीण अंचल दिखाई पड़ता है जिन गीतों में, वो हमें बहुत पसंद आता है। और अभी जो गाना हमने सुनवाया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, इसमें भी एक स्त्री मन की बात थी। और शैलेंद्र की पूरी गीत यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने स्त्री की बहुत ही भावनाओं को समर्पित किया, भावनाओं को उकेरा है अपने गाने में। उनके जीवन के अलग अलग मोड़ों पर दिल में उठते तूफान को गीतों में उन्होंने पिरोया है। और वो जो भाव है उनके अंतर मन के, उनके भाव उस गीत में उकेरे गए हैं और वो गीत आपके दिल में उतर जाते हैं। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा का वो गीत याद आता है जो अक्सर आप सुना करते हैं और आज भी बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने का जिक्र किया है। तो अब सुनिए अनुराधा फिल्म का वही गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लेकिन आपसे एक पहेली हम पूछ रहे हैं, पहेली वो ये है कि आप बूझिए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और कैसा दर्द है उस हीरोइन के चेहरे पर और उसके मन में। बहुत अनकहा दर्द है इस फिल्म में। बूझिए जरा कौन है हीरोइन और हीरो।

0: अनुराधा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, ये बताने की जरूरत कहाँ है, लेकिन फिर भी बता रहे, रविशंकर का संगीत था। और इसमें हमने आपसे पहली बूझी थी हीरो हीरोइन का नाम, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अनुराधा का ये गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है, एक स्त्री के अंदर के दुख को बहुत अच्छा बयां करते हैं। इसमें रविशंकर का संगीत था और लीला नायडू बलराज साहनी इसके हीरो हीरोइन थे, और अभी भट्टाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, बाद में वो आते हैं और जब लीला नायडू से एक अलग स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का आग्रह भी करते हैं और एक गाना और वो सुनने का आग्रह करते हैं जब लीला नायडू पर्दे पर गाती हैं, तो वो कौन सा गाना है, अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 में मुसाफिर और 1959 में अनाड़ी के बाद अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित तीसरी फिल्म है। प्रेम फिर विवाह और विवाह के बाद पति के लिए पत्नी का अपना करियर, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग, परिणाम स्वरूप मन में उपजी उलझन और फिर फैसला इस फिल्म का थीम है। पर क्या महिला अपने फैसले को तर्क और ठोस मानसिक धरातल पर ले जाती है? इस पर एक पहेली हमने पूछी है आपसे, जरा आप भी सुनिए और उस पहेली का जवाब दीजिए। जब लीला नायडू अनुराधा फिल्म में एक और गाना गाती है जिसमें उसकी तड़प है और उसके मन की पीड़ा है, जरा वो गाना आप बता सकते हैं तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार जिनके
1: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हे जिवो, ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हे पारे।
3: ए

0: मो संगरे के लागोनी कह दउछि
1: बुझिलु सना
2: मु भाबुछि कथाटार मरम जाय आउ कोठी रहिछि
3: को कथा मो अपा
2: एठे किया तो कान पाखरे कहबि जे कथाटा को तू ठीक ठौरी परिबु सुन
3: ओ कथा जाइते बि एठे एति गहन कथा
2: मु किमिति बुझिबि जे
3: हौ हेलागो जे मामुनी मानथरक भांग

0: कौटी कांची मो नयन पितुला काही कुआडे गला मो तपई
1: एठी ए गंभीरा रे सोई छथि
0: तपई मो माटा परा कहलु कहलु तोर कोन हे छे कह मते भांगी थिले गढ़ी देबी खोजे थिले खोजे आनी देबी कहलु मा भाउज माने कोन आउ गाली मद कला
2: मो कथा जदि रखिबो को तेबे जाई मो कहिबी नइले अकिया पिया सुखी सुखी ए गंभीर घरे मरि जेबी
0: छी मा छी एमिति कथा आउ दिन कहिबुनी तो मुहर एमिति कथा सुनिले मो छाती फाटि जिबलो मा कहलो मा कोन तोर हेची कहलु
1: कह त कोई कौन हेची

0: खाता को सक्रिय रखी करी बैंकिंग सेवार लाभ उठातु निजर केवाईसी अपडेट करिबा पाई निजर निकटस्थ ग्राम पंचायत रो कैंप किंबा बैंक शाखा को जानतु।
1: आरबीआई कहे
2: सचेतन हुअंतु सतर्क रुहंतु।
3: श्रोता मानको एठी जणै देउछु आजि अपनन्ह 4टा रे प्रचार करिवु आकाशवाणी रो कृषि शिक्षा एथरे विषय रहिछे लटा जातीय फसल रे रोग पोक नियंत्रण ए संपर्क रे आलोचना करिवे डॉक्टर गायत्री साहू। स्मृतिर पहाच प्रचार करिवु अपरान्ह 5टा रे एथरे सुनिबे आकाशवाणी रो अवसरप्राप्त उपमहानिर्देशिका श्रीमती उर्वशी जोशी सह साक्षात्कार।

0: देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी, यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया।
1: श्री मोदी मिशन शक्ति सैट उपर सूचना दे कहिछन्ति एभलि प्रयास कन्या संतानंकर महाकाश क्षेत्रर स्वप्नकु साकार करिबारे सहायक हेउछि। 108टी देशर पाखापाखि 12,000 कन्या संतान नवसृजन क्षेत्रर एहि मिशन अधीनरे सैटेलाइट प्रजुक्ति विद्या शिखिबार सुजोग पाउछन्ति बोली श्री मोदी कहिछन्ति।
0: उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: चलित मासरे अनुष्ठित जातीय हस्तंत्र दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन वार्षिकी, विभाजन विस्मय स्मृति दिवस आदि उपरे श्री मोदी आलोकपात करिछन्ति। स्वाधीनता दिवस एवं जातीय महाकाश दिवस प्रत्येक नागरिकको गर्वित करिछि बोली से कहिछन्ति। हर घर तिरंगा अभियान ए भावनाको अधिक सशक्त करिछि। चलित वर्ष वन्दे मातरमर 150तम वार्षिकी पालन हेउथिबारु हर घर तिरंगा अभियान स्वतन्त्र होइछि। चलित वर्ष 8 कोटी रु अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड होइथिबा श्री मोदी सूचना दैछन्ति। आंतर्जातिक स्तरें पालित होता सूर्यपथ त्रिरंगा पदक्षेप श्री मोदी आलोकपात करते आगामी पार्वण ऋतु में जन्माष्टमी विश्वकर्मा पूजा गणेश पूजा आदि उपर आलोकपात कर श्री मोदी देशवासी को शुभेच्छा जनाई पार्वण ऋतु में भोकाल फर लोकाल आपणवाक देशवासी को से आह्वान। ताशकेंटरे उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति शाभकत मिर्जियोयेव एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यरे द्विपाक्षिक आलोचना बैठक जारी रही। राष्ट्रपति भवन में चलता यह बैठक में उभय नेता वाणिज्य एवं निवेश प्रतिरक्षा डिजिटल संयोगीकरण शक्ति शिक्षा और लोकसंपर्क आदि विभिन्न क्षेत्र में सहयोग नहीं समीक्षा चली। अवसर में विभिन्न क्षेत्र में आज केतेक बुझापत्र स्वाक्षरित होवार कार्यसूची रही। बैठक पूर्व श्री मोदी उज्बेकिस्तान जोग महासंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जोग देते। बन्या प्रभावित नेपाल को भारत इतिमध्यरे 68.5 टन रिलीफ सामग्री जोगाई देछि। सेठारे अनुसंधान एवं उद्धार कार्य सहयोग पई वैषयिक दल मृतदेह चिन्हट पई फोरेंसिक विशेषज्ञ एवं आनुषंगिक उपकरण भारत नेपाल को प्रदान करिछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क रे सूचना दे कहिछि 11 टन रिलीफ सामग्री सह चतुर्थ विमान आज नेपाल रे अवतरण करिछि। नुआकटा जिले में बन्या प्रभावित त्रिशूली अंचल रे भारतीय विशेषज्ञ दल उद्धार कार्य सामिल होती डाक्तर अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी एवं सुड़ंग क्षेत्र सह जड़ित वैषयिक विशेषज्ञ अंतर्भुक्त। प्रभावित अंचल में परिवहन जोगाजोग को पुनःस्थापन करने नेपाल भारत को 42 बेली सेतु निर्माण सहायता जोगाई देवाक अनुरोध करिछि। अन्यपक्षरे बन्यारे मृत्यु संख्या 734 को वृद्धि पाई 2,500 लोक एवं मध्य निखोज अछन्ति। सेमानक मध्यरे 85 जन सुरक्षाकर्मी एवं 320 जन विदेशी नागरिक अछन्ति। प्रभावित अंचलरु 8,186 जन को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। भोटेकोशी नदी में पुनर्बार बन्या आसिबा नै नेपाल सरकार नदीकूल बासिंदा को सतर्क रहिबाकु परामर्श दैछन्ति। जातीय विपर्य आह्वान ह्रास एवं परिचालना कर्तृपक्ष भोटेकोशी नदी में जलस्तर वृद्धि पाउथिबा नै सूचना दैछन्ति। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहिछन्ति एपर्यंत 108 जन भारतीय नागरिकों को उद्धार करा सारी। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट श्री जयसवाल कहते अन्य 50 जन भारतीय नागरिकों जोगाजोग स्थापन संभव हो। चीन्रे अटक रही 900 जन भारतीय नागरिक सुरक्षित अछन्ति एवं बेजिंग स्थित भारतीय दूतावास सेमानंक सह जोगाजोग रही बोली श्री जयसवाल कहते। विश्वसनीयता हेउछि सांबादिकतार मूलदुआ बोली उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहते। केरलमर आलापुझाठारे दैनिक खबरकागज केरल कौमुदीर 115तम वार्षिकी समारोह को उद्घाटन करी उपराष्ट्रपति यह कहिछन्ति। नीतिगत पदक्षेप माध्यम रे एक शताब्दीरु अधिक समय धरि सांबादिकता क्षेत्र रे निजक प्रतिपादित करिथिबारु ए खबरकागज को उपराष्ट्रपति अभिनंदन जनाइछन्ति। समारोह रे राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आलेरकरंक समेत राज्य मंत्रिपरिषदर सदस्य जोग देथिले। दुईदिनिया गस्त अवसर रे श्री राधाकृष्णन आज सकाळे कोचीरे पहुंचिबा परे राज्यपाल आलेरकर तांकु स्वागत करिथिले। अपराह्नरे श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा स्थित बहु पुरातन एवं मर्यादाजनक अरनमुला वाटर फेस्टिवल को उद्घाटन करिबे। उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम रे ओनम पर्यटन सप्ताह समापन समारोह कार्यक्रम में मध्य जोगदेवार कार्यसूची रही।

0: सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
0: PM Swanidhi Yojana ki labharthiyon mein karib 46% mahilaen hain. यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, फूल दिए अगरबत्ती नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
0: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: Mr. Modi said today the flight of the country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatraja.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
0: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The death toll from flash floods in central Nepal has risen to 734 today, with more bodies being recovered. Nearly 2,500 people are still missing following the disaster. Bodies have been recovered from all 8 affected districts.

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव से वार्ता की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया कहा इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की कहा अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई लगभग 2,500 लोग अब भी लापता भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज़्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज़्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने

0: कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी

0: चौकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
2: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में

0: लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एते बेले जाय आपण माने कार्यक्रम सुनुथिले रिले करी प्रचार करूथिलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी कटक समय स्टूडियो घड़ी रे 2:30 आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे किछि समय व्यवधान रे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गाँव रु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

आंखों में सपनों की बारात झूमे।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उन्हीं की याद को समर्पित था ये कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक

0: निर्देशक और एक प्राध्यापक।
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और इस वक्त हाजिर हूं फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म के इस गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार रोशन।

ताजमहल फिल्म का गाना सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। डॉक्टर प्रकाश पाठक, कुमारी डेल्सी पाठक, प्रिंस पाठक ने किला वार्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक और इनका पूरा परिवार। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी राम गाडेकर और इनके पूरे परिवार की ओर से, उमर खेड़ जिला यवतमाल से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की धुन थी, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म थी पतिता। इसे सुनने के लिए पत्र लिखा था आप सभी ने गेवराई मराठवाड़ा से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से पत्र मिला। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा की ओर से फरमाइश आई थी। और जिला वाशिम से एकनाथ काले, आशाताई काले, ज्ञानेश्वर, शिवांशु, रविंद्र पवार की ओर से फरमाइश हमें मिली। चलिए अब सुने अगला गीत, ये फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देवबर्मन, फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारी ये यवतमाल विदर्भ से चंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथि और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मनंत, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी, ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था, फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद एकमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना और इनके मित्रगण। गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।
2: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
3: All right, as you wish.
4: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
3: क्या है?
4: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
3: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
4: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
4: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
3: मगर आप हैं कौन?
4: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
3: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
4: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना

0: खर्च मैं एक दिन में करता हूं, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
2: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
2: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेंद्र, इफ यू डोंट माइंड।
2: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता।
2: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा?
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
1: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, that's why I love you, darling. तुम भी कहो ना, I love you. अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना?
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना, I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured.
2: Okay, okay, ये तो just मेरे मन की शांति के लिए।
1: Please. मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: नहीं।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑलराइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेंद्र, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी।

0: जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
0: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
0: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
0: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
0: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
0: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
0: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल है,
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार है। कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखू तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
2: ये साड़ी कब खरीदी?
3: कैसी लगती है?
2: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
3: अरे ये तुम क्या कर रहे हो?
2: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़ें झगड़ें, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
3: बस एक मिनट, ये टेबल लो।
2: टेबल किस लिए?
3: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
2: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
3: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
2: आओ ना, अरे आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
3: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आती होंगे।
2: नहीं नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
3: क्या?
2: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, आई लव यू।
3: हे भगवान, इनकी सर पे भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
2: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
3: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
2: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
3: इतने जोर से ना कहो।
2: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
3: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम तो उन्हें फोन करने वाले थे ना?
2: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं?
3: छोड़ो, मुझे बहुत से काम है।
2: चुप रहो, मैं कहता हूँ, मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
2: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
3: तो कितने हो?
2: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
3: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धी मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
2: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो, एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
3: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं।
2: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
3: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। लो, मारो मुझे।
2: रेखा,
3: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
2: मर गया, अब तो जरूर चाचा जी होंगे।

0: 안 터져 쭉 퍼져 쭉 퍼져
1: 쭉쭉쭉쭉쭉쭉
0: 자칫고 교포가 아래요로 나이에도 만미로 만미로 되고 매드라마다 걸리지 않아요 예로 로말세 아수 보시찰로 로로로 아차 로마 해보시겠다 아예 아예 자자지 깨세 자자지
2: 아침 तुम दोनों कैसे हो
3: अरे मनोहर दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी
1: मैं
3: अरे कौन रो रहा है अरे रेखा बेटी क्या हुआ
0: कुछ नहीं चाचा जी वो जरा दिल भराया इसका बस
2: हमें देखकर
0: हाँ
2: हमें देखकर दिल क्यों भराया
3: मनोहर सच बताओ क्या बात है
0: अब कुछ भी नहीं ये तो बस ऐसे बिना वजह
2: किसी को रोना नहीं आता समझे
3: इस सीमाए तुम्हारी चाची के
2: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं
3: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता मनोहर बताओ बात क्या है
0: अबे कुछ नहीं ओ भाई रेखा पानी वानी भी लाओगी नहीं जाओ
1: अच्छा हो गया आप लोग आ गए वरना ये तो मुझे मार ही डालते
2: मनोहर बहू को क्या शिकायत है
0: कुछ नहीं वो जरा जिद्दी है बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी
3: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा
0: मैं तुम्हें चाहती हूँ
2: गधा कहीं का इस उम्र में शर्म नहीं आती
3: इससे पहले तुमने उसे डांटा था
0: नहीं गलत मत समझिए थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू मैं तुम्हें चाहती हूँ
3: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह
1: लीजिए पानी
0: इसकी बहन की बेटी लीना
3: कौन प्राण जीवन की बेटी
0: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है यानी कि हाँ वही होगा
3: क्या कहा तुमने
0: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी
2: ये लीना वाली बात क्या है
0: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं
3: अब भी लग रहे हैं क्या
0: कमरा खुलने से मालूम होगा मैं खोल कर देखा
2: नहीं रहने दो इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए
3: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो
0: हाँ हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं बस सिर्फ कहे तो काफी है
2: अरे पागलो ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने
0: हाँ? कमाल है चाची जी ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कमाल है
3: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई चलो रेखा बेटी
1: जी
3: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ
0: हाँ और मेरे लिए भी ना भूलना है
2: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो
0: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा
3: ये बात तो सच कही
2: क्यों तुम क्यों दखल देते हो बीच में
3: अरे मनोहर खूब याद आया भाई हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना ये लो पैसे लो
0: नहीं चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं
2: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए
0: अब लेकिन
2: अभी कुछ मत कहो
0: आप भी चाची अरे चाची की चप्पल तू ही आ जा मेरे
2: ये मनोहर को आज क्या हो गया तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था
3: अरे भाई छुट्टी के मूड में होगा
2: पागल है मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी
3: ना समझी है और क्या नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था
2: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था
3: अरे जवान है कभी कभी मजाक भी सूझता है छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है अगर बात बढ़ानी हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए तुम क्या कहती हो
2: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे
3: नहीं अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी
2: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं
3: लेकिन मान लो

0: कि मैं तुमसे कहूँ तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
1: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
0: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
2: नमस्ते चाचा जी।
0: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
2: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
2: हाँ जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला
3: कोई नहीं।
4: अरे
0: तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
2: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
0: हाँ हाँ, तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
2: आई डोंट बिलीव।
0: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने।

0: चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
1: तुम क्या अंधे थे?
0: अंधा नहीं, उदार था। उदार
1: उदार नहीं, उधार थे उधार। मेरे आने के बाद ही घर में दो वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
2: चाची जी प्लीज।
1: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
0: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
1: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
3: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
1: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
0: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
4: लीना
5: क्या है?
4: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
5: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
6: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
5: अंदर है।
6: क्यों?
4: हम जैसा ही हाल है।
6: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठंड गई है?
4: हाँ।
6: वाह मजा आ गया।
5: आपको इसमें क्या मजा आया?
6: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना?
5: मौसा जी सचमुच जोकर है।
4: तुम्हारे मौसा जी हैं?
5: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
4: पसंद? ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना
1: हाँ?
0: अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली ऑफ व्हाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो ऑफ व्हाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ।
1: हाउ नाइस।
0: अच्छा अच्छा कल कब आऊँ? लीना 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: ओह यस आई एम फ्री।
0: हाँ हेलो, हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना, एट लास्ट वी गॉट इट।
1: थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। इस मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ
0: अरे,
1: था।
0: अरे कह दिया कह दिया।
1: क्या?
0: अरे आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो इन लोगों का निपट गया।
1: मूर्ख लीना। अरे मौसी तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा।
0: और क्या?
3: मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है।
4: वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई।
3: अरे इस पगड़ी ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: चाची जी चाचा जी जल्दी आए। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: डियर डियर एक बार नहीं दो दो बार, दो दो बार।
5: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
2: चाचा जी दो बार मैं जीत गया।
0: और मैं भी दो बार जीत गया।
2: चाची चाची हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
4: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
4: तुम्हारी इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: चाचा जी, चाचा जी।
5: मर गया चाचा।
3: अरे ये क्या कह रहे हैं?
5: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये दो कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
4: तुम कुछ भी कह लो मैं टस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया? क्या हो गया?
3: क्या हो गया?
1: क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या हो गया?
5: रमा रमा
1: मनोहर मनोहर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
5: डॉक्टर रहने दो।
1: क्या हो गया?
5: एक बार सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
1: क्या कह रहे?
5: रमा रमा सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
1: देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई।
5: एक बार कह तो।
1: मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
5: खाओ मेरी कसम
1: तुम्हारी। अच्छा इसका मतलब तुमने
5: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
5: बच्चों इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
6: जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
1: अरे यार,
2: अरे भाई ये मिठाई वाला है जरा शॉकिंग मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, है ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता। आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
5: आना चाहिए।
7: ये जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
8: अरे यार,
1: अरे भाई ये।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कानडे। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
9: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
10: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
9: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
10: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
9: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
10: जी।
9: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
10: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
9: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
10: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: कुछ दिल ने कहा,
10: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
11: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
10: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
11: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
12: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
10: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
11: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
10: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
11: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
10: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
12: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
10: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
12: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
10: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय। बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे से

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया, उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माई ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जो मैं वापस से लौट के आया और दो तीन साल यहाँ का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है। उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
2: ये एनएसजी से लौटने के बाद
1: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया।
2: अच्छा।
1: मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इशू है।
2: जी बिल्कुल।
1: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं इल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है, वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका भूलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
2: वाह वाह।
1: 10 अक्टूबर 1987।
2: गजब।
1: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
2: जी जी।
1: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके, अशोक वाजपेयी से लेके, ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
2: ओहो।
1: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 450-450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
2: सयाजी शिंदे थे,
1: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
2: वाह।
1: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे।

0: फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे, तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार ये कहीं से कुछ नहीं लिया है उनका, कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को
1: समर्पित
0: चढ़ाई
1: हो रही
0: जाती,
1: थी।
0: समर्पित की जाती है और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसाल जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए उन्होंने देखा, नारायण सुर्वे देखा, पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा,
1: जी
0: या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाल ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आई है तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में,
1: जी
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है, एंड ही वॉज इन टीयर्स।
1: जी
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: पु ल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पु ल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है।
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था।
1: जी जी
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है,
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह,
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ,
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया, और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह,
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है, मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक रही थी?
0: ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया,

0: जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए। अब आगे क्या करेगा ये? आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो। तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारे से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया। और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर दो चार पांच दस नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले, नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, यहां एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: दीवाना है। वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी
1: वो देहाती लोग थे वहां के।
0: जी जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़ियेटू और पड़ेनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठीक जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली, डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
0: जी।

0: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है तो जी, ऐसा जी. लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से. तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए. तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी जो हमारी दुभाषी जो थी वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी दो तीन वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए. और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो दो रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी. उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था. तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार चार चार पांच पांच दस दस सेंटेंस. तो हमने ये तय किया था कि एवरी डे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर. और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से. पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी. तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था. तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे. और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए. हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे. तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था. तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए. तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया. एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई. तो ये सब पतेले बर्तन समेटने लगा. तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है. तो उसने कहा वो पोई,
1: मतलब गई
0: गई वो चली गई अभी. अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे. तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार. मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से. तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके, रात को 9:30 बज गए और गांव में देहात में 9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है. अब जाएं तो कहाँ गए. तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था. केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे. अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर. तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते. वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए. तब 11:30 बज रहे थे.
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं. जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे.
1: वाह.
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स.
1: जी जी.
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे.
1: जी.
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका. तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव. तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई,
1: बस पोई.
0: तो बोली अब क्या करोगे. तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा. तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे. तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं कॉफी बनाऊं. मैंने कहा कुछ मत बनाओ. तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, एक घंटा

0: आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो, इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने एक सवा डेढ़ घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितनी भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर मैं लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया,
1: रेत के ऊपर।
0: पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया। और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी, इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची। और हम ऐसा कैसा एक दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना। ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा।
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और
1: है
0: ये ऐसा, अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
1: जी,
0: यही बात है। वो
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: मैं

0: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूं। तो मैं यहां जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा, उसके ऊपर हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
1: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
1: तो वो एग्जीबिशन रतन थियाम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने एक डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
1: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब

0: ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स हैं, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले
0: वामन के थे, बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई, और 1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा चिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था, तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का। और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी कुमारी थी वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की, मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: वो क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूँ, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, 1.5-2 घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी तो मैं तो चला गया कहा रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूं।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है, मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान,
0: हाँ,
1: अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या है। तो मेरा
1: जी
0: जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूं, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है
0: जो
1: जी।
0: सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप,
0: हाँ, मैं कई बार भूल
1: हे
0: चुका क्योंकि
1: भगवान।
0: जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा
1: जी
0: कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वूरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है उनकी मार्केटिंग के लिए है। ये रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया। तो
1: जी
0: पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया। वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों

0: को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना, उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना,
1: जी
0: सप्तर्षि, चलो
1: सप्तऋषि।
0: उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरावर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता है ज्योग्राफी, कब कितना कहाँ ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके, आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है, कुछ ऐसा कह दिया होगा।
1: जी
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है,
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की
0: हाँ,
1: मर्जी से हुई,
0: मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है। तो
1: गजब।
0: मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए, जो इनको एस्ट्रोलॉजी में है, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की। घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषःकाल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा, ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूं ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी।
1: जी, और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी।
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूं एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो,
1: अरे भगवान
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा,
1: जी।
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माता जी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है, तो
1: जी
0: उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ
0: जब ऑपरेशन हुआ, वो कितने बजे पहला टै बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है,
1: जी।
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ, और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए। तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे,
1: अरे गजब।
0: और फिर मैं रुका, और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूं
1: ओहो
0: और मैं करियर करना चाहती हूं नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूं सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया अभी। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में,
1: जी
0: रबालेर वहां रहती थी, और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा, साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें, तो यहाँ लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे गजब।
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों?
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, और बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात कर?

0: करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कहीं शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर वन में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां एक घंटा इंतजार कर रहे, दो घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, दो

0: वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहाँ ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, ये यहाँ यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्टर। तो आप करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया, चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया, यार रजिस्टर यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्टर कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बंसोड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिता जी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रुपीज।
1: जी जी,
0: वो रिकॉर्ड है दुनिया का
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवार की फैमिली थी और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठलं, झुनका छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का तो बोले आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो।
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब। ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। तुम मेरे सामने हो खिलते फूलों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहटों से रोशन है ये जहां, तुम्हारे नैनों की चमक जैसे सितारे हैं, तुम्हारे होठों की हंसी जैसे बहारें हैं।

तुम्हारे बिना ये दिल वीरान हो गया, तुम्हारी यादों का साया मेरा सुकून हो गया, तुम्हारे बिना ये रास्ते अनजाने हैं, तुम्हारे बिना ये दिल बंजारा हो गया।

ना अपनी चमक खो देती है। साथ बिताए लम्हे, उन लम्हों की यादें दिल में मीठी खुशबू घोल देती है। तुम्हारी मुस्कान शहद की बूंद, मेरी नजरों में हो तुम समाए, इन नजरों के अलावा हर नजर से तुम्हें खुदा बचाए।

तुम्हारे चेहरे पे छाई जुल्फें दिल को छू गईं, तबस्सुम ने जादू कर दिया, तुम्हारी हंसी की खनक एक धुन बन गई, ख्यालों में जो चेहरा था तुम्हारे दीदार से ख्याल एक गीत बन गया।

एक अजनबी दास्तां की तलाश है, एक नए अफसाने को दिल ढूंढ रहा है, दिल की राहों में एक नया सपना है, हर पल में छुपी एक कहानी है।

0: वो खरीदार नहीं हो सकता।
1: जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ। दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है, तुमसे रात मुलाकात क्या हुई, जिंदगी मुस्कुराई है।

0: एक बात कहूं, चेहरा रूप रंग हर अदा है रूखी रूखी, जब तक ना हो इसमें इश्क की चमक, रहेगी जिंदगी सूखी सूखी। गुस्ताखी माफ।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म ओमकारा से, आवाज़ रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज राघव चैतन्य की थी। गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म अक्सर से, आवाज़ हिमेश रेशमिया की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का ही था। थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: ପିଲାଟା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଇ ଏତେ ସରିହେଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ORS ଦେଇନ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ତା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ ଏବଂ ଦେହ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ। ପିଲାଟା ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ, ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଧୋକୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁକୁ ORS ମିଶା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏଥିସହିତ ଜିଙ୍କ ବଟିକା ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ।
3: हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: पास पाकिस्तान से भारत को मुकाबला खेलना है, उसके पहले एक मौका होगा कि हांगकांग और थाईलैंड के सामने एक सदी हुई और एक मंजी हुई शुरुआत हासिल की जा सके। लेकिन अगर भारतीय टीम के पूरे सफर पर नजर डाली जाए, भारत अभी दुबई में है जहां पर टीम एशिया कप खेलेगी, इसके एक सप्ताह के भीतर टीम एशियन गेम्स के लिए जापान जाएगी, बिल्कुल अलग परिस्थितियां होंगी, और 3 से 4 महीने में यह टीम आईसीसी द्वारा आयोजित पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगी। एक बहुत ही टफ शेड्यूल है, लेकिन पूरे स्लॉट को अगर देखा जाए भारतीय टीम कितनी तैयार है।
1: शक्ति, वुमेन्स एशिया कप का जो फाइनल है वो 13 सितंबर को खेला जाना है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो एशियन गेम्स से पहले उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, क्योंकि 17 सितंबर को उनका अपना पहला मुकाबला जापान से खेलना होगा। इसके बाद वो क्वालिफाई, अगर मुकाबला जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, और वहां उसके बाद सिर्फ एक ही मुकाबला बचता है जो कि है फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो वहां काफी चैलेंजिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है और 50 ओवर फॉर्मेट में होगा, तो काफी अलग परिस्थितियां जो है भारतीय टीम के सामने रहेंगी। टफ शेड्यूल है, पर जैसा कि 2025 से हम देख ही रहे हैं, टीम ने जब से जीत दर्ज करी है तब से काफी मनोबल उनका ऊपर है।
0: जी बिल्कुल, आपने 2025 का जिक्र किया जहां भारतीय महिला टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पहली बार विश्व कप का खिताब उठाया था, और उसके बाद हालांकि टी20 में वो विश्व कप के फाइनल में ना पहुंचने की कसक शायद इस एशिया कप के खिताब के साथ मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात की जाए हॉकी विश्व कप की, जहां बेल्जियम में इस समय पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। जर्मनी की टीम 2023 में जीती थी, अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पे उतर चुकी है, वहीं स्पेन अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश में है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा करके कह सकते हैं कि कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले कल महिला हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स को शूटआउट में हराकर महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।
2: एम्स्टन फेन के वेगनर स्टेडियम में अर्जेंटीना ने सह मेजबान नीदरलैंड का लगातार चौथा महिला विश्व कप जीतने का सपना तोड़ते हुए शनिवार को पेनल्टी शूटआउट में उसे 3-1 से हराकर अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने पिछले विश्व कप फाइनल में मिली 1-3 हार का बदला भी पूरा कर लिया है। पिछली बार विश्व कप में अर्जेंटीना को नीदरलैंड ने 3-1 से ही हराया था। नीदरलैंड के लिए पहला गोल 30वें मिनट में दुनिया की नंबर एक ड्रैग फिल्कर मानी जाने वाली येबी यानसेन ने किया। मैच के अंतिम क्वार्टर में अर्जेंटीना की कप्तान मारिया ग्रेनाटो ने 54वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर मैच को पेनल्टी शूटआउट में खींच दिया, जहां अर्जेंटीना के लिए विक्टोरिया ग्रेनाटो, ब्रिसा ब्रेगेसेर और सोफिया कायरो ने गोल दागे, जबकि डियाज जो का गोल अमान्य करार कर दिया गया। वहीं नीदरलैंड के लिए वीन मारी ने गोल किया, जबकि पीएन सेंडर्स, फेलिस एल्बर्स और मोइस फ्रीके मौके को गोल में तब्दील नहीं कर सके, और नीदरलैंड्स का 10वीं बार चैंपियन बनने का सपना फिर कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। इस निर्णायक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली कप्तान ग्रेनाटो ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: I think this is really important for us. We fight together all the time. We are really happy for finally win this is final. We do a really good World Cup, so I really happy for the team.
2: वहीं विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में मेजबान बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से पराजित किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: हम जब भी लड़ते हैं साथ लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए जीत के मायने बड़े होते हैं। कप्तान ग्रेनाटा के ये शब्द बताते हैं कि उनके लिए जीत कितना महत्व रखती है। अब हॉकी से रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां म्यूजरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियाना जुआना चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब से मोहन बगान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कल रात भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाइचिंग भूटिया से ये सम्मान प्राप्त किया। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पुरस्कार साथ ही खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है, तो कह सकते हैं कि एक बेहद रोचक पुरस्कार। अक्सर हम देखते हैं जहां पे दर्शक तय करते हैं, जहां पे जूरी बैठती है वो तय करती है, लेकिन यहां पे आपके साथी खिलाड़ी तय करते हैं कि कौन

0: इस खिलाड़ी को कौन इस पुरस्कार को प्राप्त करेगा। चांगतेन इससे पहले 2023-24 के सीजन में भी ये सम्मान अपने नाम किया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने चांगते को बधाई दी है। इस बीच पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भारत और ब्राजील के बीच होने वाले मैत्री मुकाबले से पहले भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
1: I am really happy and a little bit jealous that the boys are going to play against Brazil, Uruguay and Panama. In my 26 years of professional play and 20 years of national team, I never got a chance. So the feeling that I'm getting is...

0: सीमाओं से तोड़ते हैं सीमाओं को और एक साथ लाते हैं कई दूसरे देशों को। श्री मोदी ने अगले महीने समरकंद में होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदरोव और भारतीय ग्रैंड मास्टर दीपगुकेश को शुभकामनाएं दी हैं।
1: स्पोर्ट में हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सितारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अगले महीने समरकंद में होने जा रहे चेस ओलंपियाड में इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: तो भारत के डी गुकेश जहाँ पर चुनौती रखेंगे भारतीय और सामने होंगे उनके सिंदरोव, और एक ऐसा मुकाबला जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर होगी और देखना होगा कि कौन इस गेम का नया चैंपियन बनके उभरता है। भारत जिस तरह से चेस की एक नई नर्सरी के रूप में उभरा है और जो एक पूरी लय विश्वनाथन आनंद से शुरू हुई थी वो लगातार आज प्रज्ञानंदा जैसे युवा खिलाड़ियों तक दिव्या देशमुख तक ट्रांसफर होती हुई नजर आती है। और आज संडे का दिन है तो फिर फिटनेस की डोज भी ली जाए। संडे ऑन साइकिल का 88वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। इस बीच दिल्ली में आयोजन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण देखने को मिला। संवाददाताओं से बातचीत में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है।
2: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सोल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में एक घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाएं, साइकिलिंग करें, खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें।
0: तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, एक बेहतर सफर की बुनियाद भी है ये साइकिल, जो आपको संदेश देती है पॉल्यूशन से कुछ दूर हटने का, थोड़ा

0: cheeky sweep from outside the off stump by Harmanpreet. He'll get a couple of runs as the ball trickles over towards fine leg. And it's a very important point that you made about Harmanpreet. And the fact remains that every player goes through different phases in his or her life. And Harmanpreet has a good opportunity to actually play in the shadow of Shefali and kind of get back to what she is good at. But the Thailand girls would be looking forward to exploiting this particular situation. And instead of targeting Shefali, they would try and target Harmanpreet and get wickets at one end. 103 for the loss of 2 wickets.
1: एक बार फिर से लाउमी लेग ब्रेक गेंदबाज, अगली गेंद और इस बार टर्न के सहारे इस गेंद को कट किया, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है हरमनप्रीत कौर के पास। हरमनप्रीत कौर इस वक्त एक रन बनाकर खेल रही हैं और उनके साथ 59 पर शिफाली वर्मा बैटिंग कर रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से तैयार गेंदबाज लाउमी, सामने है हरमनप्रीत कौर। ये गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, लेकिन ठीक पहले फील्डर के गेंद टप्पा खाई और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर।
0: You mentioned it right. She's not really getting the shots or the timing really very well. She wanted to go for that expansive drive over the covers, and there was Onicha who was there at long off, and Laumi would be very, very devastated. This would have been a big, big wicket.
1: Harmanpreet Kaur ko single mila, lekin ek jeevandan bhi aap keh sakte hain. Char run aur 6 gendon par ye 4 run unhone banaye hain. फिलहाल लाउमी एक बार फिर से चली ये गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट पर शेफाली ने, खुद गेंदबाज गई हैं फील्ड करने के लिए। एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर पारी का चल रहा है। लाउमी ने अपने पहले ओवर में 8 रन देकर के एक विकेट लिया। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हैं लाउमी ने और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर सामना करने के लिए तैयार। लेग ब्रेक गेंदबाज की अगली गेंद शॉर्ट गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में सिर्फ पुश भर कर पाई। एक रन लेने का मौका, अच्छा मौका था इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का, समझ नहीं पाई दरअसल हरमनप्रीत कौर। ऐसा लग रहा है टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, गुगली थी ये और ऐसे में ऑन साइड में खेला एक रन के लिए। और यही कारण है कि आलोचनाओं के केंद्र में रहती हैं हरमनप्रीत कौर। इतनी छोटी गेंद, इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, आपको घूमकर इस गेंद को मारना चाहिए था, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि आत्मविश्वास जो है हरमनप्रीत का थोड़ा सा हिला हुआ है इस ओवर की आखिरी बॉल के साथ।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर

0: शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स

0: हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेकिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल

0: स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said, maintain

0: 12 deliveries, Iqbal. A very important statement here by the Thailand girls in this particular Asia Cup.
1: निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है थाईलैंड ने और भारत को इस समय सोचने पर विवश किया है कि आखिर किस तरह से उन्होंने गलतियां की हैं और खासतौर पर जो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स बीच में आए हैं, खासतौर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और दो रनआउट्स जो थाईलैंड ने एग्जीक्यूट किए, उन दो रनआउट्स का भी बड़ा अहम योगदान है और दोनों रनआउट डायरेक्ट हिट के जरिए उन्होंने आउट किए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, कमाल की वापसी। पहले 10 ओवर भारत के नाम, लेकिन अगले 10 ओवर में जो वापसी की है थाईलैंड ने वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है, यकीन के परे लगती है कि भारत जैसी टीम के खिलाफ थाईलैंड जैसी टीम इस तरह की वापसी करेगी। माया 19वां ओवर लेकर के आ रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली बॉल, इस पहली बॉल को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन आउट का वहां पर चांस है लेकिन सीधा थ्रो इस बार लगा नहीं और ऐसे में एक रन जोखिमपूर्ण ही सही भारत के खाते में आता हुआ।
0: एक बार थिंग्स आर टर्निंग आउट एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्फिडेंस गोज अप व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। थाईलैंड डेफिनेटली हैज गॉट अ बिट ऑफ लक टुडे एंड अ बिट ऑफ यस यस नो नो काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इट्स द लास्ट पेयर इन द मिडल बट इट दैट इज व्हाट टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस shorter format of this wonderful game.
1: ये 19वां ओवर चल रहा है और ये पहला मौका है जब कोई डायरेक्ट थ्रो मिस किया है थाईलैंड ने। इस ओवर के अगली बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। पिछली 30 गेंदों पर 25 रन भारत ने बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं। राउंड द विकेट आती हुई इस बार अगली गेंद, फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, स्वीपर कवर पर, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और इसे एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का अब हो गया है 142 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी मैदान पर है भारत की तरफ से और इस अंतिम जोड़ी से उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम ये 20 ओवर्स खेल जाएं, भारत ऑल आउट ना हो, वरना ये अपने आप में बड़ी ऐसी बात हो जाएगी जहां आप कह सकते हैं कि जग हसाई वाली बात। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फुल पिच थी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, एक रन आसानी के साथ लिया बल्लेबाज क्रांति गौड़ ने और इस एक रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन भारत का 9 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद।
0: In fact, Iqbal, India would be backing themselves because they have a very strong bowling lineup and they've got some good runs on the board. But of course, as we mentioned at the beginning of the commentary, that in a multi-team format, the net run rate is always a very, very crucial thing. And this is a wonderful opportunity for India.
1: अगली बॉल के साथ राउंड द विकेट आ रही है माया, अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के बीच में, एक रन आसानी के साथ और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर। श्री चरणी 4 पर और 3 पर क्रांति गौड़ बैटिंग कर रही हैं। माया का ये तीसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 29 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। पिछली 18 गेंदों से भारत ने कोई चौका या छक्का नहीं लगाया है, अपने आप में ये सारी कहानी आप समझ सकते हैं। अगली गेंद हाई फुल टॉस, बॉलर के सर के ऊपर से उछाला लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी गेंद, गेंद को रोक लिया गया। क्या नो बॉल का इशारा अंपायर का आएगा? ऐसा लग रहा है कि सिंगल तो भारत ने पूरा किया है लेकिन नो बॉल करार नहीं दिया गया, गेंद डिप कर रही थी और कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी खेला था बल्लेबाज ने, तो ऐसे में ये नो बॉल नहीं दिया गया, गेंद डिप कर रही
0: मार्जिनल
1: डिप कर रही थी गेंद। फिलहाल अंतिम गेंद के साथ माया तैयार है, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नंदिनी। ये गेंद नंदिनी के लिए और एक बार फिर से हाई फुल टॉस, इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर क्रैश किया लेकिन स्वीपर कवर ने दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया, सिर्फ एक रन आखिरी बॉल पर और इसी के साथ 19 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारत 146 9 विकेट के नुकसान पर। कम से कम अच्छी बात यह हो रही है पंकज कि भारत 20वें ओवर में प्रवेश कर रहा है।
0: Yes, and as OP Sharma, a statistician, gave us a number, highest score for India against Thailand is 148. Probably they should go ahead of that and there shouldn't be a need of rewriting some stats there. But important here is that the Thailand players are enjoying themselves. If you see them on the field, if you see them bowling, and that is really a very positive aspect about their team because they know they are up against a huge big team like India and they have got them on the back foot. So this is a very interesting match and also for India it's a good learning because if you have a bad day very early on in a tournament that's always better, but Team India of course needs to get a big victory here as they begin

वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है और हम हाजिर हैं फ्री हिट 20 लेकर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गौतम, तो खिदमत में हाजिर है। और व्हाट अ मैच, 159 पहली इनिंग की बात करें और हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन करके चल रहे थे कि अब की बार कहीं ना कहीं 200 के पार जरूर। लेकिन मेरा साथ देने के लिए और चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं एक बार फिर से, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी।

0: हमारे साथ हैं एंड बहुत ही वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिस्टर राकेश थपलियाल हमारे साथ हैं और मेरी को होस्ट मेघा भी हैं। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, शुरुआत की बात करें वो रन आउट और उसके बाद दो बड़े रन आउट और 13वें ओवर के बाद कैसे थमी, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम पर थोड़ा सा विराम जरूर लग रहा था, लेकिन हाँ फाइनली एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है। लतिका जी
1: देखिए, मैंने पहले भी कहा शो में कि ये एशिया कप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से T20 क्रिकेट हम इतना बेहतर अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट में आप देखना चाहेंगे कि आपके बल्लेबाज गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और रही पावर प्ले की बात, अच्छा एक स्टार्ट मिला स्मृति मंदाना से और शेफाली वर्मा से जो उन्होंने हिट्स लगाए, लेकिन मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच की वजह से जो विकेट गवाया स्मृति ने और उसके बाद लगातार जो आपके विकेट गिरे हैं उसकी वजह से आज ये टोटल जो 170 75 या 180 के आसपास भी हो सकता था वो कहीं ना कहीं 160 तक सिमट के रह गया।
0: शुरुआत काफी अच्छी दी गई, शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो हाँ कंसिस्टेंट रही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हुई, कहाँ पर आपको लगता है कि जिस स्कोर कार्ड की हम बात कर रहे थे वो शायद और भी विशालकाय हो सकता था?
2: देखिए, एक तो स्मृति मंदाना का शुरुआत में रन आउट होना कैजुअल आपने लिया कि भाई डायरेक्ट हिट नहीं हो पाएगी, एक कॉन्फिडेंस उनको था अपने ऊपर, फील्डर्स के ऊपर नहीं था, लेकिन जिनके साथ आप कम खेलते हैं वो ऐसे ही आपको चौंकाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, नहीं लग रहा था कि वो इस तरह की बेहतरीन थ्रो कर सकती होंगी, लेकिन वो उन्होंने की। वहाँ से हमारा थोड़ा सा बैड पैच शुरू हो गया और उसके शेफाली वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन आप देखो कि आप किस तरह का जो शॉट सिलेक्शन है, शेफाली वर्मा हरमनप्रीत कौर जिस तरह से इजी कैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह के जो शॉट्स खेले, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके के शॉट्स खेलेंगे। तो बहुत ही इजी, पहले जो बड़े शॉट्स लग रहे थे उसमें वो आउटफील्ड में कैच पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी फील्डर, ऐसा लग रहा था कि इनको कैच पकड़ने की कला में महारत नहीं है, लेकिन जब आपने इतने इजी कैच दे दिए, बॉलर के हाथ में दे दिया, दूसरे फील्डर्स को इतने इजी कैच दे दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ये मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच जो रही, पहले 10 ओवर में आपने बना लिए 100 रन तो उससे आपको लगा कि भाई हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत ज़बरदस्त थाईलैंड की टीम ने, और ये दिखाया उन्होंने कि क्यों वो इसके जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें क्यों वो चैंपियन बने हैं। यूएई जैसी टीम को फाइनल में उन्होंने हराया, उनके बॉलर्स बड़े नाम भले ही वैसे ना हो लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, स्पिनर्स ने खासतौर पे बड़े अच्छी गेंदबाजी की, लेग स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लेना और 2 बार एक एक ओवर में 2-2 विकेट, आपने क्रिकेट में कहा जाता है नेवर लूज 2 क्विक विकेट्स, वो फार्मूला जो है शायद इनके दिमाग से उतर गया हमारी खिलाड़ियों से, 2-2 विकेट गए। और जो नए खिलाड़ी हैं जिनको जैसे मौका, प्रतीका रावल ने थोड़ा अच्छा किया लेकिन आउट बड़े खराब ढंग से हुई, जो प्रेमा रावत हैं वो जिस तरीके से आपने पिच में आप आगे निकल आए, उस समय जरूरत नहीं थी उस चीज की, जब आपके विकेट्स गिर रहे हैं थोड़ा सा आपको रुक के चलना चाहिए। क्रिकेट में देखो रन बनाना एक अलग बात होती है लेकिन हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स सबसे बड़ी चीज होती है, पारी को संवारने की कला अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो वही होगा जो आज यहाँ भारतीय टीम के साथ हुआ।
3: बिल्कुल, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेल ऑफ टू हाफ्स विद इंडिया स्कोरिंग 101 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली जस्ट मैनेजिंग 58 फॉर 7, ऑल्दो ऑब्वियसली क्रेडिट टू द टेल एंडर्स फॉर इंश्योरिंग लतिका कि भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की।
1: देखिए 20 ओवर बल्लेबाजी तो यहाँ पर करी, लेकिन मैं गेंदबाजी की तारीफ ये करूंगी कि उन्होंने एक ही लाइन एंड लेंथ में गेंदबाजी की है, भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट्स खेलने का। जरूर शुरुआत अच्छी रही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शेफाली और स्मृति से, लेकिन उसके बाद लगातार परेशान किया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया जिसका शिकार हरमन भी हुई गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से, आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को भी तकलीफ हुई रन बनाने में, और ये क्रेडिट जाता है इनकी गेंदबाजी पे, इनकी फील्डिंग एफर्ट्स पे, जिस तरह के कैचेस लिए, डायरेक्ट हिट्स लिए, तो एक दिखाता है कि ये टीम आपको इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दे रही है। तो अब ये कंपटीशन, अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी में आके ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं यूं की यूं बनी हुई हैं भारतीय टीम के लिए जिससे ये पार पाना चाहते होंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी एक और पार्ट बचा है इस मैच का, हम उसको देखेंगे वो किस तरीके से।
0: बिल्कुल, चिंता के विषय की आपने बात यहां पर की और कहा कि प्रेशर में बिखरे नहीं निखरे, एक मोड ऐसा भी आया था जब रिचा को शायद वो स्टेज सेट करने का मौका

0: मिला था वहां पर भी गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है कि वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है ऐसे मोड पर।
1: बिल्कुल, आपने आते ही पहली गेंद से इस तरीके का वो जो शॉट खेला है वो उससे ऋचा घोष से वैसी उम्मीद नहीं आपको की जाती, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बॉलर्स का फील्डर्स का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम वो हमारी बल्लेबाजों ने किया है। वो तो 10 ओवर में पूरी तरह से डाउन आउट हो चुके थे, हमारा बड़ा स्कोर, मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि जो इनिंग खेले वो एंड तक लंबी इनिंग जाएगा अगर एंड तक आपका शुरुआती बल्लेबाज टिकेंगे। अगर एंड के ओवर्स में लास्ट 5-6 ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज आएंगे तो आपको रन बनाने में दिक्कत आएगी, आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन शफाली ने जिस तरीके से इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, जितनी तारीफ हो उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुई उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसी उम्मीद मतलब नहीं की जाती थी कि इस तरीके से आउट होंगी। जो कप्तान हरमनप्रीत ने जो बैट शॉट खेला इस तरीके से, वैसी उम्मीद उनके साथ नहीं थी। लेकिन इन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, इन्होंने स्पिनर्स ने ज्यादा तेज फेंकने के बजाय बॉल को धीमा रखा, हवा में ज्यादा लटकाया, वेरिएशंस के साथ की, कोई कोई बॉल उन्होंने इस तरीके से की जो ज्यादा बाउंस उस पर पिच पे नहीं आया, तो उनको उस वेरिएशंस का फायदा मिला। और एक लाइन पे स्टिक करना, एक कम अनुभवी गेंदबाज जो होते हैं जिनको ज्यादा इंटरनेशनल का अनुभव नहीं होता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉलर्स के अंदर, खासतौर पर स्पिनर्स के अंदर, वो भी T20 में। बहुत हिम्मत इन गेंदबाजों ने दिखाई है कि जिस तरह की बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की। शुरू में ठीक है थोड़ा बहुत वेवर्ड रहे वो, उनके फास्ट बॉलर्स को भी शॉर्ट पिच गेंदे की, क्योंकि आजकल शॉर्ट पिच गेंदों पे ही लोग विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलर्स का तो एक फंडा ये बन चुका है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो वुमेन्स क्रिकेट हो, कि आप शॉर्ट पिच फेंकते रहो कितने मारेगा कोई, एक आध तो उठ ही जाएगी ना कैच, तो वो वाले उस पर अच्छे रन बनाए। लेकिन जो बैट शॉट सिलेक्शन है वो भारत को बहुत नुकसान दे गए।
0: लियोम ने कमाल तो किया, 3 बड़े विकेट लिए, लेकिन यहाँ पर जिनका डेब्यू हुआ उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रतिका रावल, एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला।
1: नहीं, प्रतिका रावल ने देखो अच्छी की, एक अच्छी साझेदारी उन्होंने लगाई है शफाली वर्मा के साथ, अर्षति की साझेदारी करना आसान नहीं, अच्छा किया। लेकिन क्या होता है कि आपको जब आप टिक गए तो आपको लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोर रह गए। और जब ना लगातार विकेट आपके गिरने लगते हैं तो जो विपक्षी टीम है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बहुत बड़े नाम हैं, थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो इतने बड़े नाम नहीं है, उनके लिए उनके गेंदबाज के लिए स्मृति मंदाना को आउट करना बहुत बड़ी बात, उनके फील्डर्स के लिए डायरेक्ट हिट, ये बार बार चीजें दिखाई जाएंगी, लोगों के जहन में रहेंगी। स्मृति मंदाना भी आज रात को सो नहीं पाएंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट हिट इस तरीके से लगा है, वो बड़ा हर्ट करता है किसी भी प्लेयर को। दीप्ति ने खुद अपनी कॉल पे जाके आप रन आउट हो गए, आप बॉल को देखने लग गए, फील्डर को देखने लग गए, आपने अपने उस पे रन पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना एरिया कवर करना है। वो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बताया जा रहा था भाई कैंप में छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है, तो ये तो बल्लेबाजी में लग रहा है कि भाई छोटी छोटी चीजों पे अभी और बहुत काम करने की जरूरत है।
2: जी बिल्कुल, और इसी तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों पर काम करते हुए थिपाचा हाईएस्ट विकेट टेकर T20 आईज की, उन्होंने आज भी प्रभावित किया आपने लेफ्ट आर्म स्पिन से।
3: बिल्कुल, देखिए कोई भी गेंदबाज होता है और गेंदबाजी जब वो करता है तो ये देखा जाता है कितना कंसिस्टेंटली वो विकेट ले रहा है, रन्स नहीं दे रहा है, बल्लेबाजों को कितना प्रेशर में लेकर आता है, और देखिए इसी की बदौलत वो आज हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में। और आज इस मैच में भी उन्होंने शो किया कि गेंदबाजी जब आप करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक लाइन लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि बल्लेबाज को आप उनके शॉट्स ना खेलने दें। तो मुझे लगता है कि पूरी ही टीम के जो भी गेंदबाज रहे हैं बहुत ही अच्छा कमबैक किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, प्रतिका रावल को आज ये मौका मिला था, वो पूरा एक लंबा यहाँ से खेल सकते थे, 20 ओवर्स पूरे खेल सकते थे, क्योंकि एक शुरुआत जरूर मिल चुकी थी प्रतिका रावल को, और एक कॉन्फिडेंस भी दिखा था जिस तरीके से उन्होंने सामने एक बड़ा हिट भी लगाया था। तो मुझे लगता है कि वही बात है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उनको और आपको एग्जीक्यूशन में लाना बहुत जरूरी है।
0: खासकर हम अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की बात करें और अब सेकंड इनिंग की तरफ जब हम जाएंगे तो ऐसे में दीप्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन और श्री चरनी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अहम होना चाहिए पावर प्ले में?
1: देखिए बड़ा अहम रहेगा, जैसे उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ शुरुआत की तो आपको जो एक ओवर फास्ट बॉलर से कराया, सेकंड ओवर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराया, तो मुझे लगता है यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि स्पिनर शुरुआत में ही लगें और पावर प्ले में ज़्यादा ओवर उनको मिल जाए करने को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी और विकेट चटकाने की तरफ जाना होगा। अगर आप शुरुआत में विकेट नहीं लेंगे कमबैक तो देखिए कर सकते हैं, इन्होंने भी कमबैक किया, कहा जाता है टी20 में कमबैक

0: नहीं होता, लेकिन कम बैक हुआ है थाईलैंड का ना, तो यहाँ हमारा भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहना है तो शुरुआत में ही हमें विकेट चटकाने होंगे।
1: बिल्कुल, गलती गलत फहमियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए, खासकर टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस। वो कैच पहले भी छूटे थे, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में हमसे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो थाईलैंड ने की।
0: कोई भी किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और उनके बल्लेबाजों को भी हल्का मानने की गलती नहीं करनी होगी।
2: हाँ, मुझे लगता है कि उनके कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रन्स बनाते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर खासा ध्यान देना होगा। हमारे जो गेंदबाज हैं, अगर हम मीडियम पेसर्स की बात करें, नंदनी की बात करें, क्रांति गौड़ की बात करें, तो पिछले कुछ समय से हमने वो फॉर्म उनकी गेंदबाजी में नहीं देखा है। वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी खलती है, रन्स ज़्यादा लीक होते हैं। तो ये सब देखना होगा कि आपने उन दोनों गेंदबाजों को अगर आज के प्लेइंग 11 में रखा है तो क्या हम दोनों को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, या एक एंड से हमें पेस अटैक दिखेगा, एक से स्पिन अटैक दिखेगा, ये देखना होगा। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे दोनों ही गेंदबाज देखने कि नई गेंद से वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अगर आप काम करके आए हैं तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, एशिया कप एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि आप हर चीज़ को यहाँ एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपफ्रंट होके उन्हीं दो गेंदबाजों से आप शुरुआत करा सकते हैं इनिंग की।
3: बिल्कुल, और राकेश हमने देखा कि किस तरह से इनिशियल ओवर्स में देयर वाज मूवमेंट अप फ्रंट, हालांकि जैसा आपने मेंशन किया शॉर्ट पिच डिलीवरी कर रही थी पेसर्स, इसलिए उतना मूवमेंट को भुना वो नहीं पाए।
0: नहीं बिल्कुल, और हमारी जो बल्लेबाज है ना, वो देखिए शॉर्ट पिच गेंदों पे बहुत अच्छे, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, शेफाली वर्मा हो, बड़े अच्छे पुल शॉट्स लगाने में वो महारत थी, और ऑफ साइड की गेंदों पे भी आजकल बढ़िया पुल शॉट लोग लगाते हैं, तो सही लाइन और लेंथ में वो होना चाहिए। लतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं तो आपको शुरुआत में उनके साथ दो दो ओवर तो कम से कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और खासकर ऐसी पिचेस की अगर हम बात करें, दुबई स्टेडियम की बात करें, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब सेकेंड इनिंग में आपकी?
0: देखिए ये पहला मैच होता है किसी भी टीम का जब एक किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के अंदर, तो थोड़ा सा एक पिच को लेके होता है कि जब तक आप खेले नहीं, प्रैक्टिस पिचें एक अलग तरह की होती हैं और जब आप मेन पिच के ऊपर खेलते हैं तो एक अलग तरीके की चीज़ आपको मिलती है। तो आज थोड़ा सा एहसास होगा, पिच का अंदाज़ा हमारी बल्लेबाजों को हो गया होगा, सब अनुभवी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो जो गेंदबाजी है उन्हीं की तरह से सही लाइन और लेंथ की बॉलिंग आपको करनी होगी और विकेट लेने की तरफ जाना पड़ेगा। अगर 20 ओवर पूरे खोलेंगे तो हो सकता है वो आपको मैच में हरा भी दें।
1: बिल्कुल, टेल एंडर्स ये सवाल कहीं ना कहीं आज आया है। लतिका मैम, तो आपको लगता है कि शुरुआत अगर आप सही कर लेंगे, ओपनर्स को थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है स्कोर कार्ड इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा आपको।
2: देखिए T20 का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आपको विकेट लगातार अंतराल में लेनी होगी, तभी आप कामयाब रहते हैं किसी भी मैच को जीतने के लिए। तो यह उम्मीद यही है कि क्रांति गौड़ किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे और नंदनी कैसी गेंदबाजी करेंगे, और आप मैच की शुरुआत होने जा रही है तो देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हम आगे देखने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और मुलाकात होगी आपसे फिर, और ये T20 का महासंग्राम है, अनिश्चितताओं का ये खेल है, फिर से हाजिर होंगे।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, जहां पर भारत ने 160 रन का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को, और इस वक्त थाईलैंड की दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर हैं और थाईलैंड अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। क्रांति गौड़ गेंदबाजी करती हुई, और क्रांति गौड़ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार होती हुई बल्लेबाज। इस बीच क्रांति चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार इस गेंद को बेहतरीन कट किया और गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। शानदार स्ट्रोक, खाता खुलता हुआ इस चौके की मदद से थाईलैंड का। तीन गेंदें हुई हैं पहले ओवर में, और इस गेंद को जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया और गेंद दन दनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। क्रांति गौड़

0: एक बार फिर से तैयार हो रही हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं नताकन चांतम इस ओवर की चौथी बॉल के साथ। भारत ने 160 रनों का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। क्रांति एक बार फिर से चली दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद अंदर आई। इस गेंद को चांतम ने सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए और 160 रनों की चुनौती इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर थाईलैंड के सामने। अगली बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा और इसी के साथ चांतम प्लेड ऑन, भारत को पहली कामयाबी। नताकन चांतम ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी, ड्राइव करने के लिए गई और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग करके स्टंप पर चली आई, मिडिल स्टंप पर जाकर गेंद हिट करती हुई और इसी के साथ भारत को पहली कामयाबी। मात्र 4 की रन संख्या पर थाईलैंड ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। भारत ने पहली कामयाबी पहले ही ओवर में हासिल कर ली है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ। स्वागत करते हैं पंकज का, बहुत बहुत स्वागत पंकज।
1: Thank you, welcoming me with a wicket, and that was the swag of Kranti. In fact, Chantham played that square cut in the earlier delivery really very well, very stylish shot, and she was looking very confident, this time not getting her foot movement, not getting the leg to the pitch of the ball and missing it. But Kranti God has got a big, big breakthrough, and as our experts also were speaking about in the mid-innings show, they mentioned that India can't really allow Thailand to play all the 20 overs. They have to get them out and a good start there for India.
0: तो भारत को पहली कामयाबी बहुत जल्द मिली है और जिस तरह का खराब प्रदर्शन भारत ने अपनी बैटिंग के दौरान आखिरी 10 ओवर में किया था, ये बहुत जरूरी था कि भारत अपनी गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत करे और अच्छी शुरुआत क्रांति गौड़ ने करा दी है। इस बीच अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ऊपर कट के अंदाज में खेल दिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आखिरी गेंद पर चौका और इसी के साथ ये स्कोर 8 रन हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद। नन्नापत कोंचो रोइंकाई
1: यस
0: इनका नाम है बड़े मुश्किल नाम है थाईलैंड के खिलाड़ियों के, नन्नापत कोंचा रोइंकाई।
1: Yes, and Iqbal, we, of course, as commentators, have been working extremely hard to get it right, and we hope we've got the pronunciation of the names of all the girls right. And Thailand, of course, as we welcome them at this big stage, they have done a phenomenal job by restricting India to 159, but then Nanapath and Maya Panita at the other end will have the task cut out. It looks very clear that they are targeting the power play. Nandini Sharma will be bowling from the other end. Now, this is the end from where the ball keeps a bit low. Now, Maya Panita is a young batter, an all-rounder. She would like to go all guns blazing with a slip. Here comes Nandini. First ball right on the money, on the stump. Very compact and played defensively by Maya Panita. In fact, the wicket that Kranti Gaur got in the earlier over was very, very important, because the fact remains that Nanapath Chantham was their top-notch player, and she is back in the pavilion. Maya Panita right now on strike, and very interesting all-rounder. We'll talk about it as a bit of an outswing there for Nandini, and Thailand are 8 for the loss of a wicket. Very rarely we see a player who opens the bowling as well as the batting. Of course, we remember Manoj Prabhakar doing that. In fact, Neil Johnson from Zimbabwe, I remember doing that. And Maya Panita, now we have one of the options. So cricket gives us an opportunity to get you some trivia, some observations from the past. And Maya Panita joins that list. Drives it, edged through gully. And the ball will trickle towards the third boundary. And Maya Panita opens her account with 4 runs. For Thailand, it doesn't matter how the runs come, but if they're able to get a good amount of runs in the power play, then they can sort of build on that foundation and see whether they can

0: travel all the way to 160 runs and create an upset or not. But the Dubai International Stadium has seen a lot of upsets. It has seen a lot of great matches. About 37, 38 degrees is the temperature out there. The girls are really giving their best. It's a test of their physical and mental ability as Harman gets the second slip in place because of that edge on the earlier over. In the early delivery, beg your pardon. Nandini bowled the first two deliveries, which were a dot ball. And she's a very good run-up and a good action. Natural outswinger. On the legs, works it towards the mid-wicket zone and picks up a quick single. A direct hit. So the Indian fielders are also getting those direct hits, but this time no chance of a run out. But Nandini Sharma is a good addition to the Indian bowling lineup because nice, tall, lanky, good action, gets the ball to swing away and gives good compliments on the other side to Kranti Gaur. But the second slip has been taken off because Nandapath is now on strike. The second slip has been moved to short third. There's a first slip. And it's going to be interesting how Nandapath now approaches this particular over. Slightly short, nicely played towards deep point for a single. Important here for Thailand batters that they keep getting the runs either through singles or doubles or through boundaries. But make sure you're getting 6 runs per over and then look out for the bad deliveries. Also, Iqbal, it's going to be interesting to see which Indian bowlers do the Thailand batters target, because they'll have to pick up one or two bowlers from the Indian lineup so that they can kind of get that acceleration towards the target of 160. Last ball of the over. Maya Panita is on strike. Waits for it. Lets it swing away. Judges it. Jovial young girl. Smiles all around. And end of over number 2. 14 for the loss of 1 wicket. Thailand.
1: जिस तरह से ननपत की बल्लेबाजी है और जिस तरह से आते ही उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया है, निश्चित तौर पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसके इस बल्लेबाज के द्वारा कुछ तेज रन बनाने की कोशिश होगी। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से प्रयास यही है कि थाईलैंड को जितना कम हो सके उतने रनों में आउट किया जाए, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम की यहाँ पर गेंदबाजी चलती है। आज भारत अपना पहला मुकाबला खेल रहा है। दूसरे मुकाबले में 3 सितंबर को भारत का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद रूम बनाकर खेलना चाहा, गेंद हवा में, इधर रन आउट का भी खतरा था, सीधा थ्रो स्टंप पर लगा है, कैच तो हुआ नहीं, लेकिन शेफाली वर्मा ने गेंद को उठाकर स्टंप पर मार दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और ऐसे में तीसरे अंपायर की तरफ इस वक्त इशारा किया गया है। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद हवा में लहराई थी, मिडॉन पर खड़े हुए फील्डर ने कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद बाहर ही रह गया है खिलाड़ी का। गेंद जब स्टंप पर लगी, बेल्स जब ज्वलित हो उठी, उस समय क्या बल्ला क्रीज के बाहर है या अंदर है, ये तीसरे अंपायर को थोड़ा सा स्लोमो में देखना होगा। ये जस्ट गेंद जब लगी है, बल्ला शायद उसी वक्त अंदर की तरफ आ गया है, लेकिन अभी भी जो मोशन, जिस मोशन में देखा जा रहा है, शायद वो करेक्ट नहीं है, स्लोमो में देखना होगा। और इस वक्त तीसरे अंपायर के द्वारा इस वक्त देखा जा रहा है, नजदीकी निगाह डाली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि तीसरे अंपायर का निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा और नॉट आउट का ही निर्णय आता हुआ तीसरे अंपायर का। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर के द्वारा, शिफाली वर्मा के द्वारा। फिलहाल अगली बॉल के साथ चली क्रांति गौड़। ये गेंद बल्ले का किनारा, स्लिप में दीप्ति शर्मा ने कैच छोड़ दिया। दीप्ति शर्मा के लिए एक आसान सा कैच, कमाल की गेंदबाजी क्रांति की। माया ड्राइव करने के लिए गई, बल्ले का जेन्युइन एज और स्लिप में हाथों में आया हुआ कैच छोड़ दिया। अगली गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस, घुमाया ऑन साइड में, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, एक रन मिला और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड का।

आसान सा मौका, आसान सी यहां पर अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती हुई, और फर्क दिखाई दे रहा है। जो एनर्जी और कमाल आज थाईलैंड ने फील्डिंग में किया, वो भारत ने शुरुआती ओवर्स में ही ठीक उसके उलट किया, एक आसान कैच छोड़ाया। अगली गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, इस बार इस गेंद पर सकपका सी गई नन्नापत, और गेंद को उन्होंने खेलने की कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं की, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। थाईलैंड का अगर हम जिक्र करें तो T20 क्रिकेट में इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया पॉइंट पर, फील्डर कोई रन नहीं। T20 इंटरनेशनल्स में थाईलैंड का जो उच्चतम स्कोर है वो 259 रन है, चार विकेट।

0: playing down the leg side. But nevertheless, she's got a wicket on the very first ball. And when you get a wicket early on, nobody complains. Nanapat batting on 10, Thailand 22 for the loss of 2 wickets. Fourth over is in progress. This is the Asia Cup 2026, the Women's Asia Cup, as India are in their first encounter of this particular tournament. Nandini gets the ball on the middle stump, not really very short, but somehow Nanapat manages to pull it uppishly over the fielder at short mid-wicket, and she will get a single on that delivery. Apisana at the other end will have to kind of hold on. Thailand can't really afford to lose any further wickets, even though they might not get runs for the next few overs. Just hold on forward and try to get back a bit of momentum, because 160 is really very big for them. You mentioned 74 is their highest against India, so they will have to really double up. A mammoth effort will be required for Thailand. Lovely drive there, a fuller length delivery, but straight to the fielder at extra cover. No run on that occasion. End of over number 4. And Thailand are 23 for the loss of 2 wickets. They're chasing 160. Now, things do happen. This pitch is really very interesting. If you wait here, if you stay here and get your eye in, just like Shefali got, there are runs there. But if you're not really able to judge the bounce on this wicket, Iqbal, batting can be a bit of a challenge.
1: निश्चित तौर पर पंकज, और एक छोर से हम देख रहे हैं शुरुआत से ही कि थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है और एक छोर पर थोड़ा सा लो बाउंस दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि थाईलैंड को प्रयास करना होगा कि वो रुक कर खेलें, जम कर खेलें, पूरे 20 ओवर तक बैटिंग करने की कोशिश करें, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर 20 ओवर की गेंद बल्लेबाजी थाईलैंड कर लेता है भारत के खिलाफ, तो ये बड़ी बात होगी उनके लिए। नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद को ऑन साइड में घुमाया, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटना चाहती है और दूसरा रन भी पलट कर पूरा कर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन दो रनों के साथ नानापत पहुंच गई है 13 पर, और थाईलैंड का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवाया था, तब भारत का स्कोर 91 था, लेकिन थाईलैंड ने बहुत जल्दी जल्दी दो विकेटें गंवाई हैं। फिलहाल क्रांति गौड़ अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से घुमाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन ऑन ड्राइव अपिश मिड विकेट के ऊपर से, और चौका मिलता हुआ नानापत को। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बावजूद भी मिड विकेट को क्लियर करने में कामयाब हुई, वरना यह कैच हो सकता था। इस बीच चौके के साथ स्कोर 29 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर चल रहा है, क्रांति गौड़ चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस वक्त एक खिलाड़ी स्लिप में नजर आ रहा है, वो खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, जो कि स्लिप में इस वक्त फील्डिंग कर रही हैं। एक कैच उन्होंने छोड़ा है। 160 का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया है थाईलैंड को। क्रांति गौड़ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में फिर से पुल किया मिड विकेट पर, और गेंद एक बार फिर से गैप में निकलते हुए 4 रन। दो बेहतरीन चौके नानापत ने मारे हैं क्रांति गौड़ को, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी इस बार, और इस गेंद को बढ़िया पुल किया 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ अब नानापत पहुंच गई हैं 21 की रन संख्या पर, और थाईलैंड का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा प्रोडक्टिव ओवर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खिलाड़ी के अगर जिक्र करें, नानापत ने तो 144 टी20 मुकाबले खेले हैं, 298 चौके लगा चुकी हैं ये अपने करियर में। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चली गेंदबाज क्रांति गौड़, ये गेंद नानापत के लिए फुल पिच डिलीवरी, बल्ले के जड़ से इस गेंद को खेला ऑन साइड में, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है। एक रन सिर्फ मिलेगा इस मर्तबा, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नानापत खेल रही हैं 21 पर, और आफिसारा स्वांचन राती इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं 1 पर। एक बार फिर से क्रांति गौड़ इस ओवर में अंतिम बार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद, और इस बार स्टंप पर आती हुई इस गेंद को लगभग खड़े खड़े

0: ने स्थान पर खेला कवर्स पर कोई रन नहीं ओवर समाप्त हुआ पांचवा और पांच ओवर्स के बाद थाईलैंड का स्कोर है 34 रन दो विकेट के नुकसान पर मौजूदा रन गति 6.8 रन प्रति ओवर का है और रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो 8.0 बल्कि 8.4 का रिक्वायर्ड रेट है तो अगर विकेटों पर अंकुश लगाए रखती है थाईलैंड की टीम पंकज और जिस तरीके से इस ओवर में 11 रन आ गए दो चौके बड़ी आसानी के साथ मारे इसी तरह से बाउंड्रीज आती रहीं रन्स सिंगल्स डबल्स के जरिए आते रहे स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा तो इस मुकाबले में एक तरह से बने रहने की जो कवायद होती है वो कम से कम कर पाती हुई थाईलैंड की टीम जरूर नजर आएगी
1: No doubt about it, Iqbal. And the fact remains that the exuberance of the Thai players is very important. Now, Thailand is not really a traditionally cricket-playing nation. They've adapted to the game really very well. And they've really improved and come up. And standing up tall to Indian bowlers of international class and hitting them, Nanapath has shown some real great confidence as Harmanpreet Kaur now gets Sri Charani into the attack. 42 wickets for her. Really very good bowler. The Sri Charani 4-12 is the best and it's going to be interesting how the Thailand batters will tackle the Indian spinners. Now we are talking about which Indian spinner will the Thailand batters target. Is Sri Charani the one? With a slip, left arm round the wicket. Here she comes. Nanapath goes for that big sweep. And there is a lot of protection there. Deep mid wicket, deep backward square leg. So India is also trying to play to what the Thailand batters would be looking forward to and the fielding placement is pretty good but right now Nanapath batting on 23 is the fulcrum for Thailand she's the pivot around where all the batters will have to work around Apisara nicely plays it square the wicket doesn't get runs but as you said she has to stand at one end Iqbal you're right she has to just give some good support Apisara Apisara as they call her you know she's a very very good all-rounder Nanapath at the other end batting on 23 Thailand 35 for 2 Sri Charani gets ready to bowl left arm round the wicket flatter delivery thought that Apisara would probably run down the wicket dance down the wicket for a big shot but a lot of conversation going on between Nanapath and Apisara that's good to see that both the batters are communicating because the pitch is I wouldn't say really very challenging but there are certain spots where you got to be careful about Thailand have a target of 160 runs to win this match. Ooh. Trying to go across. Big appeal and as it hits the pad, Apisara deep inside the crease. The appeal took some time for the umpire, but the finger goes up. India pick up a wicket. Sri Charani picks up a very, very important wicket. Kept Apisara locked, cramped inside a crease, stump to stump. And in trying to play across, Apisara was caught right plumb in front. An umpire had no problem whatsoever. So India doing the needful, putting the pressure and they are getting the wickets. The third wicket falls. Apisara goes for one. She was not looking really very comfortable. But the fact remains that could she have kind of survived there for a bit long, Iqbal, and give some support to Nanapath at the other end. But India pretty much on course with that third wicket.
0: जी हाँ बिल्कुल और यही चैलेंज होने वाला है थाईलैंड के लिए भारतीय गेंदबाजी के सामने खास तौर पर उनका टिकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है श्री चरणी बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में और काफ़ी कामयाब रही हैं अभी तक की जो जर्नी रही है श्री चरणी की वो बहुत ही कमाल की रही है और आप जो सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं भारत की तरफ से वो अभी आने बाकी हैं दीप्ति शर्मा जिन्होंने अभी अभी एक कैच छोड़ा वो मैदान पर अभी गेंदबाजी करने के लिए आई नहीं है तो दोनों स्पिन गेंदबाजों के सामने इतना आसान थाईलैंड के लिए होने वाला नहीं है लेकिन देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस ये दिखा पाते हैं कितना यहाँ पर धैर्य दिखा पाते हैं फिलहाल अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई चनीदा नई बल्लेबाज हैं उनको छोड़ती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में और ये डॉट डिलीवरी हालांकि क्या हाइट ज्यादा थी जिस गेंद पर एलबीडब्ल्यू दिया गया, हालांकि बिल्कुल बैकफुट पर धंसी हुई थी क्रीज में बल्लेबाज। अगली गेंद अफिश खेला लेकिन गैप में, और गेंद

0: जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चार रन के लिए। शेफाली वर्मा दौड़ लगाई जरूर उन्होंने लेकिन गेंद का पीछा नहीं कर पाई, एक लकी बाउंड्री आप कह सकते हैं अपीश, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद निकली और ये चौका मिला आखिरी गेंद पर। छह ओवर का खेल यानी कि पावर प्ले के ओवर्स खत्म हो गए हैं और पावर प्ले में थाईलैंड ने 39 रन बनाए हैं और 3 विकेट गंवा दिए हैं, तो निश्चित तौर पर पावर प्ले थाईलैंड के नाम नहीं रहा है, ये पावर प्ले भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा है पंकज।
1: Yes, but the efforts from the Thailand girls has been pretty good. Now, as we have been constantly saying, if you're targeting or if you have to reach 160 runs, you've got to kind of keep your wickets and play out the 20 overs. But nevertheless, comparatively, India was 65 for one. Spiti Mandana and Shefali gave a good start. And then Pratika and Shefali also had a good kind of a partnership. But Prema Rawat has been brought into the attack, leg spin, leg break bowler. And India would be looking forward to kind of finish this under 100. That will be a good thing, considering the fact that they'll get a good net run rate advantage because of that. So Nanapath is batting on 23 of 15 deliveries. Now she is the one batter that India will have to target.
0: Prema Rawat is waqt gendbazi karne ke liye aayi hai. Pehli gend on side mein is gend ko turn kiya, gend gayi hai deep square leg ke ilake mein, ek run daud karke pura kiya बल्लेबाज ने और इस एक रन की मदद से थाईलैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नानापत के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भी है, सबसे ज्यादा अगर इंप्रेसिव कोई बल्लेबाज नजर आई हैं तो वो नानापत नजर आई हैं, बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है। प्रेमा रावत अब गेंदबाजी करेंगी चनिदा को जो कि 4 रन बनाकर खेल रही हैं, चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। सातवां ओवर पारी का चल रहा है, रनों की रफ्तार 6.49 रन प्रति ओवर, तो अब से यहां पर हो सकता है अब देखें कि ज्यादातर स्पिन गेंदबाजी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इस बीच अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, खेला पॉइंट पर थोड़ी सी फंबल, फायदा उठा करके रन पूरा करना चाहती थी लेकिन जब देखा कि दोबारा फील्डर गेंद पर कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं, चनिदा ने अपना इरादा बदला और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड, टॉस जीता था थाईलैंड ने पहले बॉलिंग चुनी थी, भारत ने 159 रन बनाए 9 विकेट पर। इस बीच अगली गेंद प्रेमा रावत की, इस बार गेंद जाकर के पैड पर टकराई लेकिन साफ तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है और ऐसे में एक LBW की जो अपील थी वो उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। 160 रन का लक्ष्य इस वक्त थाईलैंड के सामने है, थाईलैंड 3 विकेट गंवा करके थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है लेकिन क्या वापसी कर पाएगी थाईलैंड की टीम? भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन ही है, क्या उसको पार कर पाएंगे इस ओवर की अगली बॉल के साथ? चली प्रेमा फ्लाइटेड गेंद और इस बार इस गेंद को डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया लेकिन मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग कप्तान हरमनप्रीत कौर की, कोई रन बनाने का मौका नहीं है बल्लेबाज चनिदा के पास। चनिदा ने 4 रन बनाए हैं, अच्छी फ्लाइट दे रही हैं प्रेमा रावत, एक बार फिर से तैयार हैं प्रेमा, सामने चनिदा, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्पिन के सहारे कवर के ऊपर से उछाला लेकिन स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर है, एक रन सिर्फ लेने का मौका चनिदा के पास। चनिदा पहुंची अब 5 की रन संख्या पर और स्कोर बढ़ता हुआ थाईलैंड का 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ प्रेमा, सामने है नानापत, ये गेंद और इस बार नानापत ने इस गेंद को पुल करना चाहा, टॉप एज लगा लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास कोई फील्डर नहीं, विकेट कीपर जब तक गेंद को जाती उठाती, एक रन दौड़ करके नानापत ने पूरा किया। 7 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त हुआ और 7 ओवरों में थाईलैंड ने 42 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नानापत 17 गेंदों पर 25 रन और चनिदा 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रही हैं।
1: India seems to be in control, no doubt about it, with the 3 wickets. And the fact remains that the Thailand batters will really have to play something really extraordinary in order to, in fact, reach that 160 runs target that has been given to them. But it's a good outing for them. And if you look at the Thailand side, their core has been the same for the last 3-4 years. You know, Maya, Nanapath, Chanida, all of them have been playing together for a long time. And that has given them a lot of confidence to come up and take up teams like India, as they are 42 for the loss of 3 wickets and they're chasing 106.

0: किसी के साथ आउट। 150वें मुकाबले को इससे बेहतर और क्या सेलिब्रेट कर सकती थी वो कि आई और पहली बॉल पर ही विकेट उड़ा ले गई हैं पंकज।
1: Naomi Hamilton pushed on the back foot, crammed for space, a good ball there to start and plumb in front, and Naomi Hamilton had no clue whatsoever. I think this was one of the easiest decisions for the umpire as half the Thailand side is back in the pavilion.
0: Naomi Hamilton matra ek run bana karke patbadha out hui hain Deepti Sharma ki gend par. तो जो विकेटों का पतन का सिलसिला था और जिसका ब्यौरा मैं कुछ देर पहले दे रहा था, ये देखिए एक और विकेट एक रन के अंतराल में। तो अगर इस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी तो फिर निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थाईलैंड को अपनी बैटिंग में खास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि गेंदबाजी उनकी अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है, फील्डिंग में वो अपना जान झोंकती हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक बैटिंग का सवाल है और अमूमन इस तरह की नई टीमें या जो इतना एक्सपोजर जिन टीमों का नहीं है उन टीमों के लिए बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। फिलहाल नए बल्लेबाज ने इस गेंद को पुश किया, ऑलमोस्ट रिटर्न कैच था ये, दीप्ति शर्मा ने अपनी बाईं तरफ डाइव लगाई लेकिन बाल बाल बच गई हैं बल्लेबाज, और ऐसे में ये विकेट नंबर 6 गिरते गिरते रह गया। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में पुल किया, शॉर्ट मिड विकेट पर कप्तान मौजूद, कैच कर लिया हरमन ने, और चाय हान आते ही मात्र दूसरी गेंद का सामना करते हुए आउट हो गई हैं। ये छठा विकेट थाईलैंड ने गंवा दिया है 44 की रन संख्या पर।
1: Yes, very difficult for the Thailand middle order to negotiate with someone like a Deepti Sharma, and a simple catch there. Chaihan not really able to get used to this particular track, and another wicket falls. India definitely kind of pressing it up, turning the screws and tightening the grip on this particular match.
0: निश्चित तौर पर और दीप्ति शर्मा के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। 150वां मुकाबला पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले चुकी हैं और इन 2 विकेटों के साथ एक बड़ा कीर्तिमान अब उनके नाम के आगे जुड़ गया है पंकज। ये जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा के अब 171 विकेट हो गए हैं और ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज यानी नंबर 1 विकेट टेकर हो गई हैं T20 क्रिकेट में। नई बल्लेबाज लावी ने इस गेंद को डिफेंड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कारनामा आज दीप्ति शर्मा ने किया है। नंबर 1 जहां तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का सवाल वो बन गई है। अगली गेंद ऑन साइड में पुल किया लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर इस बार कैच ड्रॉप हो गया।
1: Nandini Sharma was there and she really flew to her right and almost got a hand to that ball and just good attempt there, just slipping out of her grip.
0: Aakhri gend aur is baar is gend ko defend kiya, off stump ke bahar ye gend thi, is gend ko surakshatmak dhang se back to the bowler khela, koi run nahi, over samapt hua 9 aur 9 overon ke baad Thailand ka score hai 44 run 6 wicket ke nuksan par. ये 6-7 हो सकता था अगर नंदिनी ने ये कैच थाम लिया होता, लेकिन दीप्ति शर्मा कमाल की शुरुआत की है उन्होंने, पहले ओवर में 2 विकेट लिए और एक भी रन नहीं, विकेट डबल विकेट में डन हुआ।
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीप्ति शर्मा यू मेंशनड अबाउट यू टॉकिंग अबाउट व्हेन विल द बेस्ट इंडियन स्पिनर कम इन एंड शी केम इन एंड हैज गिवन यू अ डबल बोनांजा। सो थाईलैंड हियर स्ट्रगलिंग नो डाउट अबाउट इट एंड बैटिंग वाज नेवर देयर स्ट्रांग पॉइंट एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू इवॉल्व थ्रू दैट, दे हैव गॉट सम वेरी गुड बैटर्स नाउ एट द टॉप, बट जनरली इंडिया बैटिंग डिपार्टमेंट दे ऑलवेज वर्क ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड दैट कुडंट रियली हैपन टुडे एज 6 विकेट्स आर डाउन चेजिंग 160 एंड थाईलैंड probably had a lot of problem right from the beginning. Prema starts a new over, coming down the track, Nanapath drives it back to the bowler. She's been stranded at the other end. She's been watching her colleagues come and go. Nanapath is batting on 26 of 21. She will try to now to break the shackles. 44 for 6 goes for a big sweep swing under edge and the ball gets entangled into her pads. So wickets have fallen at regular intervals. Naomi Hamilton was the first victim and then in fact Chaihan was the next to go in the last over we're talking about, but

0: Right now, Thailand seems to be sort of stranded in mid-waters. They really don't know where to go. And that is what the Indian spinners, the power of the Indian spin department is all about. The opening pair of Kranti and Nandini also did a good job. And India will be happy that even their batting in the middle order was not that great. Their bowling definitely has done the needful. 10th over is in progress. Thailand 44-6. Coming down the track, driving it hard once again, straight to the bowler, good fielding. Nanapat now seems to be trying too hard. She's trying to hit the ball very, very aggressively so that she can get the runs, because she knows that if Thailand don't keep on scoring runs, survival will be a big, big problem. Four dot balls in this over. This time, cuts it hard and the ball falls short off shot third. Bharti was there and that could have been another wicket. But Nanapat struggling. She didn't take the run. And the point here is she is the lone warrior now as far as Thailand is concerned. She's batting on 26. 44-6. This could be a maiden over from Prema. Coming down the track. And once again, good fielding of her bowling in the follow-through. A maiden over, number 10, as Thailand 44-6. Struggling as expected. But the fact remains that this particular match, Iqbal, has really exposed a lot of things. Good things from the Thailand side, their fielding and their bowling, and a bit of fragility in the middle order for India. So this is going to be a very interesting time. You mentioned we are going to India is going to play Hong Kong and then Pakistan, as in this particular group, the top two will go into the semi-finals in this Women's Asia Cup of 2026. So overall, it's a good outing for India, but definitely the Indian team seems to sort of lose out on very simple opportunities of scoring really very big. And that probably needs to be corrected.
1: जी हाँ, बिल्कुल. भारत ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की आखिरी 10 ओवर्स में, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन भारत की गेंदबाजी जिस प्रकार से है और जिस तरह की गेंदबाजी भारत ने कर दी है, साफ तौर पर कहीं से कहीं तक खड़ी होती हुई थाईलैंड की टीम नजर नहीं आई है भारत की गेंदबाजी के सामने. और उस बात की गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं कि ननपत एकमात्र ऐसी बल्लेबाज हैं जो दहाई के आंकड़े में पहुंची हैं. बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में, यानी कि इकाई के आंकड़े में आउट हुई हैं. आप चाहे नताकन चांतम की बात करिए, 4 रन बनाए उन्होंने. माया ने 6 रन बनाए. इसके अलावा सुनी तुरंगा ने 5 रन किए. हैमिल्टन ने 1 रन बनाया. चाईहान ने 0 किए. तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो विकेट हैं वो लगातार अंतराल में गिर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज कुछ योगदान भी अपनी तरफ से नहीं प्रदान कर पा रहा है, एक्सेप्ट नताकन, जिन्होंने की बेहतरीन बैटिंग, बल्कि माफ कीजिएगा, ननापत ने बहुत ही शानदार बैटिंग की है, 26 गेंदों पर 26 रन. लेकिन जैसा आपने कहा कि अब उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि एक छोर से आपने 6 विकेट गंवा दिए हैं और इसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं. तो ननपत के ऊपर प्रेशर है. नंबर 3 पर वो आई थी बैटिंग करने के लिए, अभी अपने सामने उन्होंने विकेटें गिरते हुए देखी हैं. तो डेफिनेटली अब उनको भी थोड़ा सा ज़रूर इस बात को लेकर के प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन में करें तो करें क्या, रन के लिए जाएं, रोकें, किसी में भी तो फायदा नजर नहीं आ रहा. रन के लिए जाते हैं, आउट होने का खतरा रहता है और बहुत दूर है मंजिल. अगर रोकते हैं, 4 विकेटें बची हुई हैं, कोई टिकने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल में इस वक्त ननपत नजर आ रही हैं. वहीं भारत की गेंदबाजी कमाल की रही है. 3 ओवर क्रांति गौड ने डाले, 21 रन 1 विकेट. नंदिनी शर्मा 2 ओवर 13 रन 1 विकेट. श्री चरणित 2 ओवर 7 रन 2 विकेट. प्रेमा रावत 2 ओवर 1 मेडन 3 रन, कोई विकेट नहीं. दीप्ति शर्मा 1 ओवर 1 मेडन और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए. तो भारतीय सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है. हालांकि प्रेमा रावत को कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी देखें, 2 ओवर में 3 रन, 1.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन खर्च कर रही हैं. तो भारत का पूरा कंट्रोल इस मुकाबले में है. भारत पूरी तरह से नियंत्रण में इस मुकाबले में है. अभी भी 60 गेंदें बची हैं और 60 गेंदों पर 116 रन बनाने हैं. रिक्वायर्ड रेट अब लगभग 12.5 रन प्रति ओवर का हो चला है थाईलैंड के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है उनके लिए इस टारगेट को अचीव करना. फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक नए ओवर की शुरुआत हो रही है और नंदिनी शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. नंदिनी ने एक कैच छोड़ा।

0: विकेट पर अच्छी कोशिश थी, डाइव लगाते हुए हाथ में गेंद लगभग आ गई थी, अगर वो कैच ले लिया जाता तो एक ही ओवर में 3 विकेट हो जाते दीप्ति शर्मा के। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर क्षेत्र में, तोड़ करके रन पूरा किया बल्लेबाज ने, एक रन मिलता हुआ लाउमी को और इस एक रन की मदद से लाउमी का खाता खुला और थाईलैंड का स्कोर 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर ये है ये पारी का और नंदिनी शर्मा अपना ये दूसरा बल्कि तीसरा ओवर डाल रही हैं। इस ओवर की अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी रफ्तार की गेंद को कट किया, गेंद गई है स्क्वेरिश थर्डमैन पर भारती के पास, एक रन आसानी के साथ पूरा किया नानापत ने और इस एक रन की मदद से नानापत पहुंच गई हैं अब 27 पर। नानापत कोंचा रोयनकाई ये इनका पूरा नाम है, फिलहाल 27 गेंदों पर 27 रन उन्होंने बनाए हैं और इस पारी में उन्होंने 4 चौके मारे हैं। इस ओवर की अगली बॉल नंदिनी की फुल पिच डिलीवरी, बेहतरीन ड्राइव लेकिन कवर पर स्मृति मंदाना फील्डिंग कर रही हैं, गेंद को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ रोक लिया, कोई रन नहीं मिलेगा लाउमी को। 11वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा गेंदबाजी कर रही है, मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और मुझे ये आवश्यकता समझ नहीं आई कप्तान को कि तेज गेंदबाज को क्यों लाना, स्पिनर्स बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं और आपके पास 3-3 स्पिन गेंदबाज हैं, ये रणनीति क्या है, और वो भी लगातार फुल पिच गेंदें हो रही हैं तो बल्लेबाज को कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगली गेंद एक और ओवर पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, एक रन दौड़ करके पूरा किया लाउमी ने, लाउमी पहुंची अब 2 पर और थाईलैंड का स्कोर 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा को 1 विकेट मिला है, पिछली 30 गेंदों पर थाईलैंड ने मात्र 13 रन बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में रहा है, मुश्किल दौर से उनकी बल्लेबाजी गुजर रही है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी बैक ऑफ लेंथ गेंद कट करने के लिए गई बल्लेबाज नानापत लेकिन बीट हो गई, बाहर की तरफ गेंद स्विंग हो रही थी हल्की सी और कोई रन नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेटों के पीछे ऋचा घोष ने। नानापत 27 पर, लाउमी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं, 47 रन 6 विकेट पर थाईलैंड। आखिरी गेंद करने के लिए अब तैयार हैं नंदिनी शर्मा, आगे गेंद पिच कराएंगी शायद मुश्किल होगी लेकिन अगर थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखेंगी तो शायद बल्लेबाज को परेशान कर सके। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद, गेंद को बड़ी आसानी के साथ कवर पर धकेला, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त हुआ 11वां ओवर के बाद थाईलैंड 47 6 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त लाउमी 2 पर हैं और नानापत 27 रन बनाकर खेल रही हैं।
1: The Thailand players like the ball to come onto the bat. If they kind of give them that particular opportunity, they might go after the bowling, lose quick wickets, and that might create an opportunity. And India might also be trying to kind of figure out different combinations for different phases of the game, because they will be up against Hong Kong on the 3rd of September. Then they take on Pakistan on the 5th of September. Those will be the league matches. So India probably trying different combinations as Prema is back into the attack. Lovely flight there as she bowls to Laumi, and Laumi drives it towards mid-off for, in fact, straight to the fielder. So 47 for 6. And in fact, Nathakan, the opening batter, and Nanapat, these are the two mainstays of the Thailand batting order. And out of them, one didn't work. Nanapat is still there as the next ball driven towards sweeper cover by Laumi as she gets Nanapat back on strike. Now, 12th over is in progress. Nanapat will have to decide how long to continue. Will it be worth playing 20 overs or will it be worth going after? Because Thailand batters will have to target some Indian bowler. Will it be Prema? We'll have to see. Oh, good ball. Prema knew that Nanapat will be going for a big one. She was in position for that. But then a lovely flight, fuller length, and the ball turning square. Completely surprised Nanapat on that occasion. And that could have been very interesting. So Prema is also working extremely hard and trying to fox the batter. Coming down the track, but Prema just puts it a bit fuller. Can't get underneath that ball, and Nanapat has to drive it back to the bowler. Now, Nanapat was playing really very well for the first 25 deliveries that she faced. But now, the dot balls are building up the pressure on her. will she fall, will she break down, or will she retaliate?

0: wicket. She retaliates with a lovely pull. Good fielding there by Kranti Gaur at the deep backward square leg region. She saves a definite boundary and Nanapat will get a couple of runs. So Thailand inching in closer towards the half century mark, but they have got the 50. Yes, so they have reached the half century. Thank you to our scorer Rajit Sinha. And overall, there were a bit of hiccups in that second phase when India was batting the middle order, but otherwise things have gone pretty well for India. Coming down to track, driving it towards long on for a single, and Nanapat will keep strike with that single. 12 overs have been bowled, 51 for 6. Thailand chasing 160. So overall, as far as the bowling is concerned, India has done the job, but the middle of the batting, a bit of fielding, drop catches still haunting India, and they will really have to correct this as early as possible, because a bad day later on in the next phase of this particular tournament can be very, very dangerous, and India probably can't afford those kind of mistakes.
1: बिल्कुल सही बात है पंकज. और फिलहाल जो रणनीति थाईलैंड की नजर आ रही है वो ये, पिछले दो ओवर्स में अगर आपने गौर किया हो तो एरियल रूट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, लगातार जमीन के सहारे स्ट्रोक्स खेल रही हैं दोनों बल्लेबाज, और कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके ओवर्स खेलें भारत के खिलाफ. फिलहाल श्री चरणी आ रही हैं गेंदबाजी करने के लिए. पारी का 13वां ओवर लेकर के सामने होंगी नानापत, जो कि 30 रन बनाकर खेल रही हैं. श्री चरणी की फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को खेला ऑफ साइड में और गेंद जा रही है स्वीपर कवर पर. एक रन दौड़ करके पूरा किया नानापत ने, और इस एक रन की मदद से नानापत पहुंच गई हैं 31 पर और थाईलैंड का स्कोर 52 रन दो विकेट के नुकसान पर. 12.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 110 रन था तीन विकेट के नुकसान पर. थाईलैंड का स्कोर 52 रन है छह विकेट के नुकसान पर. फिलहाल श्री चरणी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रही हैं, लाउमी को गेंदबाजी करेंगी राउंड द विकेट आती हुई. श्री चरणी की अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर ने स्टंप्स उड़ा दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुलिपोर्ण लाउमी का पिछला पैर क्रीज के अंदर मौजूद था और ऐसे में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के ऊपर. लेकिन बढ़िया इस बार टर्न मिला गेंदबाज श्री चरणी को और पूरी तरह से टर्न के सहारे बीट किया बल्लेबाज को. इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार हैं श्री चरणी. श्री चरणी का ये तीसरा ओवर है, 8 रन देकर के 2 विकेटें निकाली हैं इन्होंने. बाएं हाथ से राउंड द विकेट ये गेंद और इस बार खड़े खड़े इस गेंद को खेला ऑफ साइड में पॉइंट क्षेत्र में. एक रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज लाउमी ने, और इस एक रन की मदद से लाउमी पहुंच गई हैं 4 पर और थाईलैंड का स्कोर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर. श्री चरणी लेफ्ट आर्म स्पिनर, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हैं, दौड़ती हैं, शुरुआत करती हैं जाडेजा की तरह स्लो, और लगभग उसी प्रकार की उनकी उनका एक्शन भी है. अगली गेंद और इस बार तेज गेंद, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी, इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं नानापत को. 31 पर है नानापत. पांचवी बॉल के साथ श्री चरणी तैयार, राउंड द विकेट, स्लिप को अब हटा लिया गया है. अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को फुल टॉस पर लेना चाहती थी, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर ऑन साइड में गई. विकेट कीपर ऋचा घोष गई हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड की टीम का. 2 विकेटें मिली हैं श्री चरणी को, अपने तीसरे विकेट की तलाश में है. आखिरी बॉल तीसरा ओवर अपना डाल रही हैं. अगली गेंद और इस बार फिर से टर्न और एक्स्ट्रा बाउंस भी था, बीट कर दिया बल्लेबाज लाउमी को, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ 13वां. 13 ओवरों के बाद थाईलैंड का स्कोर है 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर. नानापत 32 पर, 36 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 4 चौके लगाए हैं, जबकि लाउमी 4 रन बनाकर खेल रही हैं, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. रिक्वायर्ड रेट जिक्र करना क्या सही है पंकज, 15 से ज्यादा का अब रिक्वायर्ड रेट हो चुका है.
0: And Thailand, of course, I mean, you can't expect them to really go slam bang against a team like India, but they have done a very good job. It's very encouraging to see that they have kind of held on fort. Now, the challenge for India would be they've got Thailand 54 for 6 after 13 overs. India shouldn't allow them to play 20 overs. Now, that is going to be another very important point as Prema Rawat starts a new over. Quicker, flatter, compact delivery, and

0: Anapath has to play it back to the bowler. So the point here remains that can India quickly finish off the tail? Now that's also an art, and that's also an art of making a statement. As Prema Rawat, the leg break bowler, flighted, comes down the track. Nanapa drives it. Good dive there by Sri. In fact, Deep Shefali at mid-off, she gets a hand to it. Otherwise, that was a certain boundary. And a single there as far as Nanapa is concerned. Very important here. In fact, they come back for the second run because the ball trickled towards the boundary line. And Nanapath will have to keep the strike as long as possible. Try and go for the big hits because you can't expect the lower middle order to do much. Quicker delivery down the leg side. Will it be called as a wide? Was very, very close as Nanapath tried to kind of go on the back foot and pull it. It's not given a wide. Very, very close, but an interesting decision. 56 for 6, Thailand. They need 104 runs to win this match. Coming down the track and almost a cotton bowl. Came down the track, found herself in an awkward position, cross-batted straight what Nanapath played, and it almost popped back to Prema. Probably she thought that it will come into her hands all the way, but that was not the case. Pulling that ball from way outside the off stump towards long on for a single. That will take Thailand to 57 for 6. And India probably are doing the right thing, but they need to kind of quickly finish this innings, Iqbal, because letting or allowing Thailand to play 20 overs will not really reflect good on the Indian bowling. Nicely driven, the next ball, which was a flighted one, a square drive there by Laumi. She will keep the strike at the end of over number 14. Thailand are 58 for the loss of 6 wickets. So Thailand were not really expected to kind of go really very hard initially, score 50-60 odd runs in the power play. But what they have done is they're showing the tenacity to stay there even after 6 wickets have gone. Now, can India finish it off quickly is what we'll have to see. And that will really help sharpen India's bowling for the upcoming matches in this particular tournament.
1: जी हाँ, बिल्कुल. और भारत की गेंदबाजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है पंकज. लेकिन पिछले 5 ओवर और 3 गेंदे, यानी पिछले 5.5 ओवर से भारत को कोई विकेट नहीं मिला है. 33 गेंदे ये दोनों बल्लेबाज खेल चुकी हैं. इस जोड़ी ने 33 गेंदों का सामना किया है, यानी 5.5 ओवर का सामना किया है और 14 रन बनाए. रन इतने मायने नहीं रखते यहां पर, क्योंकि रन्स अभी वैसे ही बहुत ज्यादा अब जरूरी हैं. 102 रन चाहिए 36 गेंदों पर, तो थोड़ा मुश्किल अब यहां पर लगने लगा है. इस बीच अगले ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में उछाल कर खेला, लेकिन स्क्वायरिश थर्ड मैन से पहले गेंद टप्पा खाई है. एक रन मिलेगा बल्लेबाज को, तो इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58, 6 विकेट के नुकसान पर. इस सिंगल की मदद से अब लाउमी पहुंची हैं 6 पर, 35 पर ननपत बैटिंग कर रही हैं. ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और उस मुकाबले की भी कमेंट्री आप आकाशवाणी पर सुन सकेंगे. फिलहाल एक बार फिर से तैयार होती हुई गेंदबाज, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर काफी ऊपर आ गई हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया. बीट हो गई बल्लेबाज इस मरतबा ननपत और गेंद चली गई ऋचा घोष के दस्ताने में. तो इस साझेदारी ने रन कितने बनाए हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो टिकने की जो एक मंशा दिखाई है, पूरे 20 ओवर खेलने की जो मंशा दिखाई है, वो जरूर उसमें कामयाब नजर आ रही है. नंदिनी इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामने है ननपत, ये गेंद और इस बार ननपत ने इस गेंद को घूमकर मारा फाइन लेग क्षेत्र में, गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास रोक लिया गया और इस दरमियान दौड़ करके एक रन पूरा किया बल्लेबाज ननपत ने, और इस एक रन की मदद से ननपत पहुंच गई हैं 36 पर और थाईलैंड का स्कोर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर. साझेदारी 15 रनों की हो गई है, 16 रनों की, इनफैक्ट 16 रनों की साझेदारी 36 गेंदों पर. पिछली 51 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई है, पिछली 51 गेंदों से कोई चौका या छक्का नहीं लगा है. इस ओवर की अगली गेंद फुल पिच डिलीवरी, रूम बनाकर खेला कवर्स पर, लेकिन गेंद को इनफील्ड के अंदर रोक लिया गया, कोई रन नहीं. तो साफ

0: तौर पर अब थाईलैंड के खेल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रणनीति से यही लग रहा है कि वो 160 चेज करने के लिए नहीं जा रही हैं, वो 20 ओवर खेलने के लिए जा रही हैं। और शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी सपोर्ट स्टाफ ने या कोई टेक्निकल स्टाफ ने उनको जरूर बताया होगा कि देखिए भारत के खिलाफ आपका उच्चतम स्कोर 74 है, उसको जरूर पार कर लीजिएगा। इस ओवर की अगली गेंद उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, इस बार आउट होने का खतरा और इसी के साथ आउट। लाउमी आखिरकार अपने धैर्य को संभाल कर न रख पाई, धैर्य टूटा, एरियल रूट का इस्तेमाल और इस बार लॉन्ग ऑन पर शेफाली वर्मा के हाथों में एक आसान कैच और इसी के साथ ये सातवां विकेट जाता हुआ। कुल 38 गेंदों का सामना किया, यानी कि 6 ओवर और 2 गेंदें खेल करके ये जोड़ी टूटी है। इस बार ये धीमी गति की गेंद का, उंगलियों का इस्तेमाल, ऑलमोस्ट लेग कटर की तरह ये गेंद डाली थी नंदिनी शर्मा ने और उसमें फंस गई लालच में, मारने की कोशिश हवा में और कैच आउट हो गई। सो विकेट नंबर 7 का पतन हो गया है। ये 15वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रही हैं और 3.5 ओवर में 18 रन देकर के उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। कोटे की अंतिम गेंद करने के लिए अब वो तैयार होंगी। नई बल्लेबाज सुनीता अब मैदान पर आई हैं। 15वां ओवर, अंतिम गेंद और अभी भी अगर देखें तो 100 रन दूर है थाईलैंड, 100 रन दूर, 60 है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद सुनीता के लिए और इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी और इसी के साथ सुनीता आउट। नंदिनी शर्मा को लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक पर, लेकिन अब उनके पास ओवर ही नहीं है इस मैच में।
1: सो विल दैट हैपन इन द नेक्स्ट मैच? Quick one there, the ball just cutting away and Sunida had no chance whatsoever. She just poked at it, outside edge, and good catch in the end there by Richa. And back-to-back wickets for Nandini. 15 overs, Thailand 60 for the loss of 8 wickets now. This is probably a quick finish here and India doing pretty well, Iqbal. And Nandini in fact got that back of the hand ball in the last penultimate delivery, there was a wicket and this was a quick leg cutter. So she's really using all her variations and she has got a couple of quick wickets for India.
0: तो भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों को विकेट मिला है प्रेमा रावत को छोड़कर के। प्रेमा रावत ने कोटा भी हालांकि पूरा कर लिया है अपना, 4 ओवर में 1 मिडन 11 रन, कोई विकेट नहीं। क्रांति गौड़ के पास 1 ओवर है, 1 ओवर श्री चरणी के पास है और दीप्ति शर्मा के पास 3 ओवर्स बचे हुए हैं। तो साफ तौर पर एक छोर से अब दीप्ति शर्मा ही नजर आएंगी, अगला ओवर लेकर के दीप्ति शर्मा आएंगी। फिलहाल नानापत 36 रन बना करके अभी भी मैदान पर मोर्चा संभाले हुए हैं। नंबर 3 पर आई थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन कोई साथी है कि टिकने का नाम नहीं ले रहा।
1: Kranti Gaur is back into the attack and Nanapat tries to go for that big heave. They go for the run, direct hit, and Smriti Mandhana gets a run out there. So, but the problem here is that Onicha and Nanapat were there in exactly at the center of the pitch. The umpire will have to figure out who is the one who has to go back, because the throw was at the non-striker's end. Did Onicha, who was at the non-striker's end, took off and crossed over, is what both the umpires will have to look at for. In fact, Nanapat tried to go for a big shot. The ball went towards mid-on at Smriti Mandhana's position and she had a direct hit. There was a bit of a confusion between both the batters and a direct hit has does the needful. Now the third umpire, of course, need not give the decision whether it's out or not. Yes, it's a definite out, but who has to walk back is going to be the big question. Cricket is a funny game. A lot of rules, regulations, everything has to be taken into consideration. And I guess Nanapat crossed over a bit. That's what looks prima facie. And the umpire now looking at the technicalities, discussing amongst themselves and the third umpire, as the replay will make it much more clearer. And Onicha didn't want the run. Nanapat started off and then decided not to take the run. And both the batters were stranded in between. Smriti Mandhana had a very simple throw at the non-striker's end. And there is a wicket which has

0: all the teams, I guess India has the best bowling attack, if I may say so, in this particular Asian championship. And they are really working hard on that. So can India continue? Is this a good start for them? Because if they win, this will be a big, big victory for India.
1: निश्चित तौर पर अब गेंदबाजी करने के लिए दीप्ति शर्मा को बुलाया जा रहा है पारी का 17वां ओवर लेकर के. इस पूरी इनिंग्स में ननापत को छोड़कर के कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाई हैं थाईलैंड की तरफ से. 9 विकेटें गिर जाने के बावजूद भी हम ये कह पा रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंची हैं. सिर्फ ननापत ही ने दहाई का आंकड़ा छुआ है. इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमजोर थाईलैंड की बैटिंग रही है. दीप्ति शर्मा इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं. 17वां ओवर है पारी का. क्या ये पारी का अंतिम ओवर हो सकता है? नए ओवर की शुरुआत. पहली गेंद रूम बनाकर कट करने की कोशिश. बल्ले का किनारा. विकेट कीपर का डाइविंग कैच. और इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है. 94 रनों से थाईलैंड को पराजित कर दिया है. एशिया कप विमेन्स एशिया कप के भारत ने अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारतीय टीम 94 रनों से जीत हासिल कर रही है. और एशिया कप के इतिहास में भी दीप्ति शर्मा अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. 29 विकेटें इसी विकेट के साथ एशिया कप में अब दीप्ति शर्मा के विकेट्स की संख्या हो गई है. और निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया दिन रहा है दीप्ति के लिए. 150वां मुकाबला बहुत यादगार रहा है. तो जाते जाते आपको बता दें कि आज के मुकाबले में टॉस जीता थाईलैंड की कप्तान ने. टॉस जीत करके उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 100 और जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में 65 रन बना करके ऑल आउट हो गई. और इस तरह से भारत ने विमेन्स एशिया कप 2026 में 94 रनों की जीत के साथ एक धमाकेदार आगाज किए हैं. तो इसी सूचना के साथ मैं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ आप सभी को स्टूडियोज वापस लिए चलता हूं, जहां से आप सुनेंगे पोस्ट मैच कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच. आइए
2: Player of the match. India opened their campaign in the Women's Asia Cup 2026 with a statement issuing thumping 94-run win. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Gautam. We've got former Indian cricketer Latika Kumari and senior sports journalist Rakesh Thapliyal.
3: And this match was also interesting because Agaz kahin na kahin ek jeet ke saath kiya hai Team India ne. And wo comparison 66-74. और अब फाइनली ये जो डिस्टेंस हमें देखने को मिला है, इसने एक अलग कीर्तिमान सेटल कर दिया है. बिकॉज हाँ, शुरुआत में कहा जाता है कि शुरुआत अगर भली होती है तो सब भला होता है, लेकिन जिस तरीके से परिणाम हमारे सामने है, बहुत ही बढ़िया. एक्साइटेड हम सब हैं. कुछ कहेंगे मैम आप?
4: बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी होता है जब कोई टूर्नामेंट हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से पहला मैच हमारा जाता है, कौन कौन से बॉक्स हम टिक करते हैं. तो आज मैं ये कहूंगी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक अच्छा क्रिकेट खेला है, एग्जीक्यूशन अच्छे हुए हैं, बट फिर भी यहाँ से आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आपका मिडल ऑर्डर कैसा खेल रहा है, कि लास्ट में आके जो रन्स आने चाहिए वो आज के मैच में उतने आए नहीं है. तो मुझे लगता है कि बैटिंग में अभी भी काम करना बाकी है.
2: बिल्कुल. और राकेश, अगर हम यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो जब दीप्ति शर्मा ने स्लिप्स में वो कैच छोड़ा, डेजा वू सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद से काफी इम्प्रूव फील्डिंग शो देखने को मिला. मंदाना का डायरेक्ट हिट, शिफाली वर्मा का वो डाइव, इस तरह के कई एफर्ट्स देखने को मिले.
5: देखिए, अच्छी चीज है. ये लग रहा है कि भाई कैंप के अंदर जो काम हुआ है फील्डिंग के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, बॉलिंग पे काम दिखाई दे रहा है. हालांकि जो आपके बैटर्स हैं वो ऐसे इतने बड़े लेवल के नहीं थे कि जिसपे हमारी बॉलिंग की परीक्षा हो, लेकिन जो लाइन और लेंथ की बात है वो उसमें अच्छे हमारे बॉलर्स रहे हैं। और आपने देखिए 9 ओवर में 44 रन पे 6 विकेट

0: विकेट उनके गिर गए थे तो मैच तो वहीं खत्म हो गया था। पहले 10 ओवर में हम अच्छा खेले और वो पहले 10 ओवर में अपनी बैटिंग में खराब खेल के उन्होंने मैच हाथ से निकाल गया। देखो क्या होता है कि ये एक 40 ओवर का मैच है, 2020 का मैच है, तो कोई भी आपकी तैयारी जो होती है वो 40 ओवर के लिए होनी चाहिए, है ना। पहले 20 ओवर में आप अच्छा खेले थाईलैंड, लेकिन उसके बाद वो एक कंप्लेसेंसी उनके अंदर दिखाई दी, बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आई एक उनकी एक बैटर को छोड़ के, और कोई भी जो है डबल फिगर में नहीं आ पाया। और हिंदुस्तान की तरफ से ये अच्छी बात है कि हमारे एक्स्ट्रा भी कोई डबल फिगर में नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा रन गया तो एक अच्छी बात है, वो भी वाइड का। तो मुझे लगता है कि बॉलर्स ने हमारा अच्छा किया। थाईलैंड की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हमें शुरुआती झटका दे दिया और ये झटका हमें आगे के मैचों में काम आएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है।

0: पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: में अगर उतारते हैं
2: जी बिल्कुल, और पूरी तैयारी के साथ हमारे श्रोता आते हैं जब वो हमारे शो में जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ। एक बार फिर से आपको नंबर्स याद दिला दें, 0112342108410 और 1085। पहले कॉलर जो अभी इस शो में जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग मैम।
2: जी अपना परिचय दीजिए। गुड इवनिंग,
3: मैं प्रकाश बोल रहा हूँ महाराष्ट्र अमरावती से।
2: प्रकाश, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी?
3: मेरा ना राकेश टपिया सर है वहाँ पे
2: जी।
3: वो मेरे बहुत ही फेवरेट है। जब भी सीनियर स्पोर्ट्स या फिर स्टूडियो में आते तो बहुत अच्छी सलाह देते, तो मेरा ना उनसे एक सवाल है कि राकेश सर मुझे ये बताइए कि एक छोटे टीम के सामने हमारा कोलैप्स हो चुका है, बट उनका बैटिंग लाइनअप अच्छा नहीं था, तो अभी पाकिस्तान जैसे टीमें सामने आने वाली है, तो क्या हम जो प्रेमा रावत जो स्पिनर हमारे साथ में अभी है, तो क्या हम उनको रेगुलरली खिला पाएंगे, या फिर हरमन कोई जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वही चला पाएंगे?
1: नहीं देखिए,
3: मैं वेट करूंगा सर।
1: हाँ देखिए प्रकाश जी, ऐसा है कि अब ये डिपेंड करेगा कि प्रेरणा रावत को अगला मैच मिलता है कि नहीं मिलता। आप किसी भी गेंदबाज को अभी हम विकेट से नहीं आंक सकते, हमें उनकी गेंदबाजी देखनी होगी कि अच्छे बैटर्स के खिलाफ, अच्छी टीम के खिलाफ वो किस तरह की गेंदबाजी करती हैं। लेकिन डेफिनेटली टीम में ली गई हैं तो उनके अंदर प्रतिभा तो सिलेक्टर्स ने देखी ही है, और आज गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की है, इसमें कोई डाउट नहीं।
2: जी बिल्कुल, और अब वक्त हो चला है प्लेयर ऑफ द मैच को सुनने का। आइए जानते हैं कौन है प्लेयर ऑफ द मैच और क्या कहना चाहती है वो।
4: ก็หนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เล่นกับทีมอินเดียเพราะว่าเขาเป็นทีมที่อยู่ระดับโลกใช่แล้วหนูรู้สึกว่าทีมของหนูวันนี้คือแบบว่าสนุกกับการเล่นคริกเก็ตมากใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ดู enjoy ค่ะ
5: She's quite proud how we performed overall. It was a good opportunity for Thailand to play against a big team like India. We don't get these opportunity a lot. It was a good outing overall, and they will come back harder next time.
6: Was there any hope in the from the 11th over the 20th over? You restricted India for only 58 runs and took 7 wickets. At that time, did you think that you can win this game?
5: ตอนนั้นหนูก็คิดว่าเกมโบลิ่งของเราอะค่ะดีมากแล้วก็อาจจะมีพลาดลายกับเลนบ้างใช่แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ค่ะ Yeah, she felt that the second half was done well, and we restricted under the total, which looked like would have surpassed as per their first turnovers. And that was the plan that after the final total, we could have gone again.
6: Bad luck today. All the best for the next game. Thank you very much. Thank you.
5: Thank you.
6: That's the skipper of Thailand, Thipacha Puthawang. Now, I would like to ask Miss Anjani Gaja to award the player of the match for her 64 of 36 deliveries, courtesy 8 fours and 3 sixes, none other than and Shefali Verma. Barrett superbly asked Miss Anjani Gaja to hand over the check as well as the trophy, and afterwards she will join me for a quick chat. Very well done, Shefali. Enjoyed watching you. That was a superb knock. Talk us about the conditions out there as well as how well you were hitting the ball today.
7: Yeah, of course, in the starting, I was just trying to, place the ball in the gaps. And then after the new ball get old and there's a bit of hold, and I'm just trying to used to with that. So just thinking about that only.
6: You said a bit of hold, but is that with the new ball only? And once the ball lose the hardness and the shine, it got better and better in the latter part?
7: I will say in the starting, there's a bit of ball is coming very nicely on the bat, and then there's a bit of hold, as I

0: said earlier. So I'm just trying to, you know, just play late and just see the ball and just hitting in the gaps. That's it.
1: Overall, happy as a group, how the game went out?
0: Yeah, of course, we are happy as a team. That's what we are planning to, you know, just go out there and give everything for our team. So we all did well. We are so happy.
1: And lovely watching you bat. All the best to you next game as well.
0: Thank you.
1: Thank you very much. That's Shefali Verma, the player of the match. Now, I would like to request Harminpreet Kaur to join me for a chat. Before that, she'll sign the match ball and join me afterwards. Skipper led the side well. India winning by 94 runs. The perfect start for their campaign in this competition. Harminpreet, good to see you. Very well done today. Must be proud the way the team performed today.
2: Yeah, definitely. I think it was a good start with the bat in between when ball was holding. We didn't play good shots, but I think overall it was a good game for us.
1: 10 overs, 101 for 2, and the next 10 overs, 58 for 7. You put it down to reckless batting or good bowling and good fielding by Thailand?
2: I think with new ball was coming nicely on the bat, but after that there was a bit hold, and even as I mentioned, our batters, all of us, we didn't play good shots. But I think at the same time, I would like to give credit to the Thailand bowlers also. They were also, you know, try to ball those areas where it was not easy to hit the ball. So I think both way, they also bowled well, and we also didn't execute ourselves well in the middle.
1: That was going to be my next question. How impressed are you the discipline that Thailand shows with the ball as well as in the field?
2: Yeah, I've been telling that, you know, all the teams we are playing in Asia Cup, they have shown a lot of improvement, and we always talk about, you know, this tournament is something where we can't take any team lightly, because we have seen the massive improvement, and I think they have shown us, you know, there is nothing you can take easily, you have to work really hard.
1: Few words about Shefali Verma as well as Deepti Sharma, who's played 150th game.
2: Yeah, I mean, both of them are key players for us. Shefali is somebody who is doing well. Good to see, you know, she's getting that rhythm in the batting and scoring those crucial runs for us. And Deepti is somebody who has got a lot of experience, a lot of wickets behind her. And I think today also she used her experience.
1: Very well done today. All the best for you as well next game.
2: Thank you so much.
1: Thank you, Harminpreet. Thanks for talking to us. That's it from the post-match presentation.
3: Well, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर फिर यादें आती हैं. वक्त नहीं और वक्त हमारा है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी हमने देखा कि किस तरीके से कमाल किया है शेफाली वर्मा ने 64 रनों की पारी खेली. और शुरुआती दौर में जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी जो आपके साथ ओपनर आया रन आउट होकर चला गया, तो ऐसे में दबाव कितना होता है, कितना प्रेशर होता है?
4: देखिए, दबाव ये इस मैटर ऑफ इंजॉयमेंट है. क्रिकेट आप खेल रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, दबाव के लिए कोई नहीं खेलता. और जब एक बड़ी प्लेयर आउट होती है तो दूसरी प्लेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आती है, और शेफाली वर्मा ने वो दिखाया राइट फ्रॉम द 50 ओवर वर्ल्ड कप. हम देख रहे हैं कैसे उनको सेमीफाइनल में लाया गया था. सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छी प्रदर्शन किया, इसी वजह से आज वो इस टीम का हिस्सा है और इतना बड़ा उनका नाम है. जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले तो बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स खेले उन्होंने, बहुत जबरदस्त. अच्छा लग रहा था कि अच्छे निक में लग रही थी शुरू से ही. और लेकिन वो आउट जो हुई है, आउट बहुत खराब हुई है. आज उनके पास मौका था. जब एक टीम में आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको बड़े स्कोर खेलने की आदत डालनी पड़ती है. कई बार क्या होता है कि 50-60 रन बना के आपके अंदर एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, या उस बॉलर को बहुत लाइटली आप लेने लगते हैं. तो जिस तरीके से वो आउट होना उनका बहुत खराब था, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली. पारी को जो संवारना उन्हें आता है वो एक आर्ट है. देखिए, वो आर्ट थाईलैंड के बल्लेबाजों में कहीं नजर नहीं आई. उनके एक बल्लेबाज को छोड़कर बाकी किसी के अंदर वो चीज नजर नहीं आई. और शेफाली वर्मा तो देखिए, अच्छी फील्डिंग में भी वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बल्लेबाजी में जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेलती है ना, उनके शॉट्स गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले होते हैं. वो एक बड़ी चीज है कि किस तरीके से आपको फायदा उठाना है पावर प्ले का, कैसे जो है आप पिच ड्राइव खेलने हैं, वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई दी. और उनके शॉट्स में अच्छी इंटरटेनमेंट भी होती है, क्योंकि लोग तो स्टेडियम में ज्यादा नहीं थे, लेकिन क्रिकेट जो है वो इंटरटेनमेंट भी है, आपको इंटरटेन भी करना है. तो ऐसे आपने इनिंग खेली कि जिसमें लोग इंटरटेन भी हुए, आपकी टीम को भी फायदा मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप खेले, अच्छी पार्टनरशिप आपने लगाई प्रतीका रावल के साथ, तो वो एक टीम के लिए बड़ा योगदान देके गई. वरना बड़ा लॉस हो सकता था. 10 ओवर में हम 100 रन पे कुछ ज्यादा रन बना पाए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर में हम बिल्कुल ढह गए.
5: जी बिल्कुल. और 19 30 20 आई अर्धशतक उन्होंने जड़ा.

0: बात कही वहां पर दोनों कप्तान हरमन और उसके अलावा शेफाली वर्मा ने भी कि देयर वाज होल्ड इन द विकेट. लतिका उसके बाद लगा ऐसे जो बल्लेबाज आए हैं कंडीशन का क्या सही उन्होंने आकलन किया था क्योंकि दे वर गोइंग फॉर देयर शॉट्स.
1: बिल्कुल. और देखिए हम भी ये बात कर रहे थे कि मैच देख रहे थे जब कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल वहां पर और जो हमारे बल्लेबाज हैं या तो वो बॉल को जज नहीं कर पा रहे थे और बॉल थोड़ा डिप करके जा रहा था. तो डिप जब बॉल करता है ना तो थोड़ा कदमों की चहलकर्मी दिखानी पड़ती है. तो वहाँ मुझे लगता है कि जजमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था बल्लेबाजों का जिसकी वजह से डॉट बॉल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था. मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल को सही तरीके से आप जज करते हैं डिसीजन सही तरीके से लेते हैं किसी भी शॉट को सिलेक्ट करने के लिए तो वो आपको आगे आने वाले इनिंग्स में भी हेल्प करेगा. तो स्पिनर्स जब बॉल डाल रहे हैं बॉल होल्ड कर रहा है तो उस टाइम पे आपको अटैक करेंगे स्पिनर पे तो ज़्यादा आसानी होती है खेलने में रादर देन आप विकेट में रहकर ट्रीज में रहकर गेंदबाजों को खेलते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रिप कर रही है सतह जो ग्रिप करती है गेंद को तो वो कहीं ना कहीं हलचल करती है और वो हलचल बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करती है.
2: देखिए हलचल काफी अच्छी है लेकिन आने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो वहां पर भी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और क्लिक करना पड़ेगा. एंड आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में भी होंगे उनके जवाब शायद राकेश जी बेटर तरीके से दे सके कि आज शेफाली वर्मा चली बहुत बढ़िया था लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी हमारे श्रोता थे या जितने भी मैच लोग देख रहे होंगे कि हाँ किसी और का क्लिक होना भी बहुत जरूरी था.
3: देखिए मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा से कि आप वक्त की नज़ाकत के हिसाब से खेलें. आप वक्त की टीम को ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए. जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट में कहते हैं कि दो विकेट जल्दी जल्दी मत जाने दो. हमारे साथ दो बार ऐसा वाकया हुआ कि एक एक ओवर में हमारे दो दो विकेट गिरे और वो खराब शॉट सिलेक्शन था. हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान है उन्होंने भी बोला कि खराब शॉट्स हमने खेले जिसकी वजह से विकेट गंवाए. तो आपको इंटरटेनिंग खेलनी है प्लस टीम की जरूरत के हिसाब से. तो जो ये नए खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के अंदर देखिए टैलेंटर एक बहुत पुरानी चीज़ है. आज वो चीज़ मुझे तो ख़त्म होती दिखती है. हम किसी को टैलेंटर नहीं मानते. टैलेंटर कहना पहले एक थोड़ा सा खिलाड़ी का एक अपमान सा माना जाता था लेकिन आज हर खिलाड़ी को योगदान देना है. जो निचले क्रम का गेंदबाज भी है तो उसको भी तैयारी कराई जाती है कि आपको 10-15 रन का योगदान कैसे आप दे सकते हैं. जरूरत के हिसाब से खेलना है. दूसरा बल्लेबाज अच्छा कर रहा तो आप उसको चांस दीजिए सिंगल लेके उसको मौका दीजिए. ये सारी चीज़ें जो पारी को संवारने में काम आती हैं वो हर खिलाड़ी को दिखानी पड़ेगी क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर टीम के लिए खेलना है प्लस अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को भी दिखाना है. अगर आप अच्छी एबिलिटी के साथ प्रदर्शन करेंगे तो उसका टीम को भी फायदा मिलेगा. लेकिन आप अच्छी एबिलिटी पिच पे जाके नहीं दिखाएंगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा टीम को भी नुकसान होगा.
0: और लतिका जितनी बल्लेबाजी डीप हो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं उनके पास भी कॉन्फिडेंस होता है अपनी रणनीति बनाने का कि कुछ अगर जरूरत पड़े तो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ सकता है.
1: देखिए बिल्कुल आपके पास प्लेटफॉर्म एकदम सज गया था. ऊपर जो आपके ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी वहाँ पे बल्लेबाजी की. आपको ये दिखाया कि इस विकेट पे किस तरह की शॉट सिलेक्शन जो है आप करके इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसे बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा है कुछ कर रहा है तो आप स्ट्राइक रोटेट इनिंग के बीच में कर सकते हैं तो डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं देखेंगे उस टाइम पे. क्योंकि जितने भी हमारे अगर फुलमल्ली की बात कर ले हम दीप्ति शर्मा हो गए ऋचा घोष हो गई ये सब एक बड़े हिट को लगाने के वजह से जो है अपना विकेट गंवाया इन्होंने. तो मुझे लगता है जब आपके पास ऋचा घोष 13वां ओवर में आ गई थी अंदर उनके पास 7 ओवर थे वहां से अराउंड 40-40 बॉल्स उनके पास थी खेलने के लिए. तो मुझे लगता है कि आपको वहां इनिंग बिल्ड करना आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ बात करके क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी कहीं ना कहीं आपको एक या दो गेंदें ऐसी मिल रही थी जो आप बड़े शॉट में उन गेंदों को कन्वर्ट कर सकते थे. तो एक टेम्परामेंट आपका कैसा है उस टाइम पर बल्लेबाजी करते हुए और किस तरीके से जैसा कि हरमन ने भी कहा कि आपके शॉट सिलेक्शन क्या है तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक गेम को एक अच्छे नोट पे फिनिश करने के लिए जहां 20-25 रन थोड़ा पीछे रह गए.
2: और सबसे बड़ी बात पता है मौके जरूर मिले थे थाईलैंड को कैचेस के लेकिन वहां पर वो कैचेस ड्रॉप हुए थे और वो सीधे सीधे कैचेस थे. राकेश जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
3: वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है और अगर उस तरीके का होता कि क्या होता है कि आउटफील्ड में जब आप खड़े हैं या इनर सर्कल में खड़े हैं थोड़ा स्टार्ट आपको लेना पड़ता है थोड़ा झुक के चलना पड़ता है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ उन तक वैसी उनको कोचिंग उस तरह की नहीं दे पाया या उनको बताया गया तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि

0: एक प्रैक्टिस में चीजें करना अलग बात होती है, और मैच के अंदर जब बड़ी खिलाड़ी जिनका नाम हो, जिनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, तो उनके खिलाफ जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज का दबाव रहता है। तो वैसे ही मतलब फुर्ती इतनी उनमें नजर नहीं है, लेकिन आप देखिए जब सेकंड हाफ में वो कैच पकड़ने लगे तो उन्होंने कैच पकड़े, बाद में उन्होंने दिखाया, हालांकि वो थोड़े आसान कैच थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डिफिकल्ट कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं।
1: लतिका, अब हम शो के समापन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वापस से भारतीय गेंदबाजी पर जिक्र करते हुए चलते हैं, खास करके पेस अटैक जिसपे बहुत सवाल उठ रहे थे। आज जो जवाब मिले हैं शायद कंक्लूसिव जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंदिनी ने शुरुआती स्पेल में मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद समझदारी से स्लो ओवर्स का इस्तेमाल किया,
2: देखिए बिल्कुल, और काफी काम करना पड़ेगा अभी भी। अगर आप इससे बेहतर किसी टीम के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, क्रांति गौड़ जिस तरह की गेंदबाजी करती है, नंदिनी जिस तरह की गेंदबाजी करती है, मुझे लगता है कि नंदिनी के पास जो है स्विंग करने की जो कला है उसकी वजह से वो विकेट लेने में कामयाब होती रही है। सही लाइन और लेंथ पे अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, वह मेहनत करते रहेंगे, तो आपको और सफलताएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज विकेट उनके खाते में है, और बहुत टाइम के बाद ये विकेट देखा है हमने एक पेस बॉलर्स के, चाहे वो क्रांति गौड़ हो चाहे वो नंदिनी हो। तो अच्छा लगता है कि जब आपके अपफ्रंट आकर जो गेंदबाज हैं, जो इनिंग की शुरुआत करते हैं, वो गेंद विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में और अच्छे इनके जो स्टैट्स हैं वो हम देखने को मिलेंगे।
3: बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमा भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गुण चाहिए। शंखनाथ, कमाल का हो गया, शुरुआत काफी भली हो गई है, लेकिन आने वाले सफर में और भी सारे हर्डल आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी समय हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, और अगली चुनौती भारत को मिलनी है 3 तारीख को हांगकांग के रूप में, हमारे विशेषज्ञों का। आपका गौतम बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन टीम का भी, माधवी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर हमारे प्रोड्यूसर हैं, शाहनवाज खान, टेक्निकल टीम है हमारी अजय राणा, जयराम, सुशील कुमार और सचिन वत्स की। और इसके साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और वापस आने के वादे के साथ यहां से साइन ऑफ करते हैं।
4: प्लेयर ऑफ द मैच।
5: अभी आप वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
6: You have been listening to a special program, Player of the Match, of the T20 cricket match played between India and Thailand, of the Women's Asia Cup T20 cricket tournament 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. Misha.
7: দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত এবং থাইল্যান্ড মধ্যে অনুষ্ঠিত T20 মহিলা এশিয়া কাপ ক্রিকেট ম্যাচর ধারা বিবরণী এবং বিশেষ কার্যক্রম রিলে করে প্রচার কলু আকাশবাণী দিল্লি।
8: ଆଜି ରିଲେ କରି ଶୁଣାଇଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ T20 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:23। ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃ 5:55 ରେ। ଶୁଭରାତ୍ରୀ ସହ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।